संत हमारी ओढ़ सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यो बने आई, पूर्व लिखिया पाई, एह मन तेरा पाई रहाओ। संतन स्यो मेरी लेवा देवी, संतन स्यो ब्योहारा, संतन स्यो हम लाहा खाटिया, हर भगत भरे भंडारा। संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहां करै गो, जो फाट्यो सगलो लेखा। महा आनंद भय सुख पाया, संतन कह प्रसादे, कहो नानक हर स्यो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। सोरठ महला पंजवां, जेती समग

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद मुद्र दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नाम वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा बिशरत आन मिलाया। पशु प्रेत मुग्द पय स्रोते हर नामा मुख गाया। पूरे गुर की देख बढ़ाई ताकी कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा मन बाइथ फल।

जो कुछ करै सोई सोई जानै, रहै न कछु ऐशानी रहाओ। जेहबा स्वाद लोभ मद माताओ, उपजे अनक बेकारा। बहुत जोन भरमत दुख पाया, हौं मैं बंधन के पारा। दे के वाड़ अनक पड़ दे मैं, परदारा संग फाकै। चित्र गुबत जब लेखा मांगै, तब कौन पड़दा तेरा टक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट ना काई। काढ़ लिहो संसार सागर मैं, नानक प्रभ शरणाई। सोरठ महला पंजवां, पार ब्रह्म होवा सहाई। कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपूरे की बाणी। जप अंत करो नित प्राणी, हर साचा सिमरो भाई। साध संग सदा सुख पाईऐ, हर बिसरना कब हूं जाई रहाओ। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। जिसनो कर्म प्राप्त होवै, सो जन निर्मल थीवै। बिघ्न विनाशन सब दुख नासन, गुर चरणी मन लागा। गुण गावते अच्युत अविनाशी, अंधन हर रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली। आदि अंत मद नानक कहो, सो प्रभ हो आबेली। सोरठ महला पंजवां, पंच पदा। बिनसै मोह मेरा यार तेरा, बिनसै अपनी तारी। संतो यह बतावो कारी, जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ। सर्वभूत पार ब्रह्म कर मान्या, होवा सगल रे नारी। पेख्यो प्रभ जी अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखिया, तिस गुर मिल रोग बेदारी। सोरठ महला पंजवां, कर दूजा। दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सगल बनस्पत मैं बैसंतर, सगल दूध मैं किया। ऊंच नीच मैं ज्योत समाणी, कटकट माधव जिया। संताओ कटकट रया समायो, पूर्ण पूर्ण रहो सर्व मैं। जल थल रमैया आहयो रहाओ। गुण निधान नानक जस गावै, सतगुर भरम चुकायो। सर्व निवासी सदा अलेपा, समय रया समायो। सोरठ महला पंजवां, जाकै सिमरन होए आनंदा। बिनसै जन मरण पै दुखी, चार पदार्थ नव निद पावै। बहुर ना तृष्णा भुखी, जा को नाम लै तू सुखी। सास सास त्यावो ठाकर कहो, मन तन जिया रे मुखी रहाओ। सांत पावै होवै मन शीतल, अग्न ना अंतर तुखी। गुरु नानक कहो प्रभु दिखाया, जल थल तेरे भवन रुखी। सोरठ महला पंजवां, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा। इन ते आप छड़ावो, एह पीतर ते इनको डारो। आपन निकट बुलावो, अपनी विद्या आप जनावो। हर जन मंगल गावो रहाओ। बिसर नाही कबहू ही ते, एह बिद मन मैं पावो। गुरपूरा भेट्यो वडभागी, जन नानक कतै ना तावो। सोरठ महला पंजवां, जा कै सिमरण सब कछ पाईऐ। बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो। जो समय रहा समाई, हर हर सिमरो संत गोपाला। साध संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण होवै काला रहाओ। सार समालै नित प्रतपालै, प्रेम सहित गल लावै। कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै। सोरठ महला पंजवां,
अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड़ दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की तूर नानक दास बंश है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवां जन्म जन्म

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अविनाशी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार। सोरठ महला पंजवा गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म।

सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होवा तार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जन की लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखै पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आनदिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचों ने सहसा चुकाया सिकदारों ने पतियाया उमरावो आगे चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभद अपनी पाई ता कत आवे कत जाई तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर इशनाना रहाओ साची गुर वडियाई ता की कीमत कहन ना जाई सिर साहा पातशाह गुर भेट तमन ओ महा सगल प्राहित लाथे मिल साध संगत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करै जयकारा नानक प्रभ मेरा साथे जन्म मरण पैलाथे सोरठ महला पंजवा गुर पूरै कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इसनान गृह आए अनंद मंगल सुख पाए संत हो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अन दिन सुकृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडपागी पाए कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी चितलाए उस्तत करहो सदा प्रभ अपने जन पूरी कल राखी जी जंत सा पय पवित्रा सदगुर की सच साखी बिघन बिनासन सब दुख नासन सदगुर नाम दृढ़ाया खोए पाप पय सब पावन जन नानक सुख कर आया सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पय दयाला
जप अनद।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु अवतराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जमका फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी शरण सचे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखन मैं उपजे।

जैसा बाल को पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हर अंतर जामी सब जाने ता किस पै आख सुनाई है कहना कथन ना पीजे गोविंद हर भाव है पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय अनंदा दुख ले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सतगुर भावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक एक त्याया, सर्व फला पुन पाया। सोरठ महला पंजवां, कर तीजा दो पद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इसनाना, गुरपुरै कीने दाना, सब कुशल खेम।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक सच बखाना, सोरठ महला पंजवां, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरणाई, सोरठ महला पंजवां, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवां, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगै को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवां, गुरपूरा आराधे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवां, भूखे खावत ला, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवां, सुख

आई जिन अचरज सो बनाई रहाओ। बोले साहेब कै पाण दास बाणी ब्रह्म खाण। नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई। सोरठ महला पंजवां प्रभ अपना हृदय ते आए। कर सही सलामत आए संतोख भया संसारे। गुरपूरै लै तारे संताओ प्रभ मेरा सदा दयाला। अपने भगत की गणत न गणई राखै बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय और तारे तन सबे थोक सवारे। गुरपूरै तुस दिया फिर नानक दुख ना थिया। सोरठ महला पंजवां हर मन तन वसिया सोई। जय जयकार करे सब कोई गुरपूरे की वडियाई। ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम जिसनो बख्श लह मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा। नानक प्रभ शरण आई मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवां आगे सुख मेरे मीता। पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई। फिर डोलत कतहू नाही साचे साहेब स्यो मन मान्या। हर सर्ब निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला। अचरज तेरी वड़ियाई नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवां नाल नारायण मेरा जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साखे। गुरपूरै पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले। दास को समत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए। नानक प्रभ पहरा नानक प्रभ शरण आए जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुर। ताकी सरणी पाई है दर्शन भेटत होत आनंदा। दुख गया हर गाई है हर रस पीवो पाई। नाम जपो नामो आराधो गुरपूरे की शरणाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूर्ण पाई। नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवां करण करावन हरे अंतर जामी। जन अपने की रखै जय जयकार होत जग पीतर। शब्द गुरु रस चाख।

सुनी पुकार सम्राट स्वामी बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पहारे उतारे।

दारा मीत पूत रथ संपत तन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा। मन रे कौन कुमत लीनी पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ। मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नहीं उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माए निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना। बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा। मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ। अटल भयो त्रू जा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा। अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहें जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना ही बसावै। पर धन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही सरन साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो।

लोभ मोह अपमाना हरख सोग तेर है न्यारो नाहे माने अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परसै नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यो पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहू दिस घेरै विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत नेरै कर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर पागी एह बिद को ब्योहार बनयो है जास्यो नेहो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौथकी एको अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो बड़े मसान ना जाई तृष्णा राजना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर स्यों बैरागिए पाई दर कर साचिया पूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिलिया सुख पाया पाई जूका मनो गुमान जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बुढ़े तेहे गोर बिन अलख ना लखिए पाई जग बुढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई जय पावे तें दे बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईंधन अदक सकेलिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हरनाक समार पजाया गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वडियाई भगता की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ भगता नु जम जोहे न साकै काल ना नेड़े जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई अरिद सिद्ध सब भगता चरनी लागी गुर कै सह सुबाई मन मुखा नु प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हृदय शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मनमुख फीका या लाओ भगता विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख विधाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सबका ईश्वर नहारा ओना की रीस करे सो विगुचै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे के

हर दाता सब जगत पिखारिया, मंगत जन जनता हर देवो दान दयाल होए, विच पाथर क्रिम जनता जन नानक नाम ते आया, गुरमुख धनवंता। श्लोक महला तीजा। पढ़ना गुणना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार, हमें विच सब पढ़ थके, दूजे पाए खुआर। सो पढ़िया सो पंडित बिना, गुरशब्द करे विचार, अंदर खोजै तत लह पाए मुख द्वार। गुण निदान हर पाया सहज करे विचार, तन व्यापारी नानका जिस गुरमुख नाम आधार। महला तीजा। विण मन मारे कोई ना सिजई, वेखो को लिवलाए, पेख तारी तीर्थी भव थके, ना एहो मन मारिया जाए। गुरमुख एहो मन जीवत मरै, सच रह लिवलाए, नानक इस मन की मल ए उतरै, हमें शब्द जलाए पौड़ी। हर हर संत मिलो मेरे भाई, हर नाम दृढ़ाओ एक किनका, हर हर सिंगार बनावो हर जन, हर कापड़ पैरो खिमका। ऐसा सिंगार मेरे प्रभावै, हर लागे प्यारा प्रेम का। हर हर नाम बोलो दिन राती, सब के लिखो काटैक पलका। हर हर दयाल होवै जिस उपर, सो गुरमुख हर जप जिनका। श्लोक महला तीजा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्या हो, खनली तोती उजली ना हो वही, जैसो तोवन पाहो। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे मत बदला हो, नानक मैल न लग गई ना फिर जोनी पाहो। महला तीजा। चहो जुगी कल काली कांडी, एक उत्तम पदवी है जुग माहे, गुरमुख हर कीर्त फल पाई है, जिनको हर लिख पाहे। नानक गुर प्रसादी अंदन भगत हर उचरै, हर भगती माए समाहे पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर भली बाण, हर गुण गावा हर नित चमा, गुरमती हर रंग सदा माण। हर जब जब औखद खाद्या, सब रोग वाते दुखा कहाण, जिन्ना सास ग्रास ना विसरै, से हर जन पूरे सही जान। जो गुरमुख हरिया राधते, तन चुकी जमकी जगत काण। श्लोक महला तीजा। अरे जन उथारे दबेओ, सुत्या गई मुहाए, सतगुर का शब्द सुन ना जाग्यो, अंतर ना उपजो चाओ, शरीर जलो गुण बाहरा, जो गुर कार ना कुमाए। जगत जलंदा डिठ मैं, हमें दूजे पाए, नानक गुर शरण आई उबरे, सच मन सब त्याए। महला तीजा। शब्द रते हमें गई, सोभावंती नार, पर कै पाने सदा चलै, ता बनिया सिंगार। से सुहावी सदा प्रदावै, हर वर पाया नार, ना हर मरै ना कदे दुख लागै, सदा सुहागण नार। नानक हर प्रमे लई, गुर कै हित प्यार पौड़ी। जिन्ना गुर गोप्या अपना, ते नर बुरियारी, हर जियो तिनका दर्शन ना करो, पापिष्ट हत्यारी। ओहे घर घर फिरे कसुध मन, जो धरखट नारी, वडभागी संगत मिलै गुरमुख सवारी। हर मेलो सतगुर दया कर, गुर कौ बलिहारी। श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुखी उपजै, फिर दुख न लगै आए, जमन मरना मिट गया, काले का किश ना बसाए। हर सेती मन रव रहया, सचे रहा समाए, नानक हां बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। बिन शब्द सुध ना हो वई, जे अनेक करें सिंगार,

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा। रहाओ बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश कूश तन दीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिरया और ना देखा।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिले ओ जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोबन कौ माटा, ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत सचेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जा ते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहाही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहचाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख मान। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेहारे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लही है। बस्ता गोचर पाई, कट दीप करे आसमाई। कह

हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी काया मांजस कौन गुना जौ कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सठ तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई कह कबीर बिचारी पव सागर तार मुरारी सोरठ एको अंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कर पर तन लियावै सुदारा बयान लुटावै मन मेरे पूले कपट ना कीजै अंतन बेरा तेरे जी पहली जह रहाओ छिन छिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ओ ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा संत हो मन पमने सुख बनया कि जोग प्राप्त गनया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै हाँ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जवाले खाट मांगो चौपाई सरहाना अवर तुलाई ऊपर कौ मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जानिया राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तौ जन तीरज पावा नाद समाए लोरे सतगुर भेट ले देवा रहाओ जह चिल मिलकार दिसंता तै अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार बिजल तही नेरै नाही दूर निजात मैं रया भरपूर जय अनहत सूर उजियारा तह दीपक जलै शंशारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहे समानिया कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान शिवाई हो तो पै दुगनी मजूरी दहाओ मोको बेडी देहो बताई हो रिबाई बेडी देन न जाई देख बेडी रे उसमाई हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ बेडी प्रीत मजूरी मांगे जौ को शान शिवावे हो लोग को टंब सबोते तोरे तो अपन बेडी आवे हो ऐसो बेडी बर्न ना सको सब अंतर सब ठाई हो गुंगे महा अमृत रस चाखिया पूछे कह न जाई हो बेडी के गुण सुन री बाई जल्द बांतु था प्यो हो नामे के स्वामी सी बहोरी लंकप भीखण आप्यो हो सोरठ करती जा अड़मड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर गाय।

तव हम पय है चकोरा। माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यों तोर कवन स्यों जो रह रहाओ। जो तुम दीवरा तव हम बाती, जो तुम तीर्थ तव हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोरे अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रवदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कम उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होएगो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुंचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा काय औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कह ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना, कैसे करी पुकार, दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार रहाओ, अंदन साहेब सेविया अंत छाए सोए, सुन सुन मेरी कमनी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा, सदगुर बण जाओ रहाओ, सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए, ता की सेवा सो करे जा को नदर करे, तुदवाज प्यारे केव रहा, सा वड़ियाई देह जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए, जिस आग्या प्यारे जाए कहां रहाओ। सेवी साहेब अपना, अवर न जाचों कोए, नानक तांका दास है, बिंद बिंद चुख चुख होए, साहेब तेरे ना विटाओ, बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तनासरी महला पहला, हम आदमी हां एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिन मैत सरे वो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार, देख के ते के दिना रहाओ, सास मां सब जियो तुम्हारा, तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड़ै गहना। नानक बिन मैं सो किश पाईऐ, पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चेतना किया, कपटी कपट कमाणा। जम द्वार जा पकड़ चलाया, ता चलदा पछताणा। जब लग दुनिया रही है नानक, किस सुनिया किस कही है, भाल रहे हम रहन ना पाया, जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी, सिवरिया नहीं जाए, तपह आओ जियड़ा बिललाए। सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म ना पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ, वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखे ना को खाए, लोक पतिने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी नाही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनों बख्से साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मोदिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवै रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरै। गुर प्रसादी पाया जाए, हर सो चित लागै, फिर काल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवै प्रगास, ताते बिख्या मैं रह उदास। सतगुर की ऐसी वड़ियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करै।
ਜਿਸਕਾ ਜੀਉ ਤਿਸਿਆ ਗੈ ਧਰੈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਮਤੇ ਕੈਸਾ ਡਰੈ ਭਨਤ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਪ ਤਪ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ।

रे सहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दूता।

ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोजी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरे राजन, बिनसो टीठा अमृत बूठा, शब्द लगो गुर मीठा, जल थल महियल सर्व निवासी, नानकर मैया डीठा, तनासरी महला पंजवा, जब ते दर्शन पेटे साधु, भले दिन ओए आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन, पुरख विदाता पाए, अब मोहे राम जसो मन गायो, भयो प्रगास सदा सुख मन में, सतगुर पूरा पायो रहाओ।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नेकी खटानी जी की कह ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूजी। बिखिया मैं किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे ना भूखा। उद्दम करै सुवान की न्याई चारे कुंटा कोखा। कामवंत कामी बहु नारी परगरे जोहन चूकै दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै। हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना। सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना। तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कहो है।

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बिखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस युग में पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख पागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवां, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारै, विश्राम निद पाई। तुम करो दया।

पूत है त्राता उन कर कर मेल्यो दुआ किस ही वाद घाट किस ही पै सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन्हें हो चलत दिखाया गुजी पहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद मां सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया। अपने घर लै आया खाटे तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। जिहवा एक कवन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया रहाओ। कोट प्राध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महला।

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल हर जस, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै, प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै, अस्त्र करे निचल एहु मनुआ, बहुण ना कतहु तावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर की निंदा, इन स्यों प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री महा

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहु जात सतगुर पूरे कीनी दात हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ जिसका सा तिन ही रख लिया पूर्ण प्रभ की पाती मेल लियो आपे सुखदाता नानक हर राखी पाती तनासरी महला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरै प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओह तत्काल तुम्हारा निरखो तुमरी ओर हर नीत मुरार सहाय हो दास कहो कर गए उधरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरा खसमा ना करे आप नानक अंध भय दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवा चतर दिशा कीनो बल अपना सिरी उपर कर धारियो कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दया

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवा औखी कड़ी न देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डराओ, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानाओ, तब हाँ पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे, हर रस चोग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै, क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए, रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे, सरवर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहे समाए, सरवर मैं हंस हंस मैं सागर, अकत कथा गुरबचनी आदर, सुन मंडलिक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे, तिर पवन जोत रहे लिव लाई, सुर नरनाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूला नाथ आधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै काटन हारे, हमे मार मिले पगतारे, अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल मैं आए, जन्म पदार्थ

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा। मन मिलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आजुगा सहज मन तीर। पल पंकज मैं कोटो धारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे।

अन क्यों पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी करतो सद ही विहावै कोई ऐसो रे पेटै संत मेरी लाहै सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै पड़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खेना धीरै मेरे करके पंचा।

मन कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगलिया शर्म कीने मनु आन है पतीने बबेक।

कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेखै जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुरप्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन ने साच तीर्थ मजना साच ना लागै मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आ पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावनहार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावै सहज नावै बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़ै सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी हौ मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवै बिखला दे शब्द सचै गुर मेरा आखण तोटना भगत भंडारी परपुर रया सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिरसर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मैं साए समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मने अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक साब दोहरा वाद वधंदिया जियो दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवार नहारा नानक साहेब सब संजापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसै पारस होए जा तेरा मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहंदर साचै साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम ते आए सा जियो
ਸੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸੱਚ ਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਇਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧਰੋ ਫੁਰਮਾਈ ਆ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਰ ਸਿੰਘ ਮੂਠੜੀਏ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈਆ ਜੀਓ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆੜਾ ਲੇਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ ਗੁਣੀਆ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਅਵਗੁਣ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਸੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਆਕੀ ਛਾਇਆ ਬਿਰਧ ਭਏ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ

तू दाता दातार सर्व दुख भंजनो जियो दुख हरत करता सुख है स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक माह तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै भंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा तारिया जियो मोहे निर्गुण नीचा नाथ प्रभ अगम्या पारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरा सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल विचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोली जियो नित जपै तेरे दास पुरख्या तोली जियो संत रसन उठा आप तूठा हर रस से ही मातिया गुरचरण लागे महापागे सदा अंगन जागया सद सदा सिमर तब स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक तूर साधु नाम प्रभु अमोलई। राग तनहासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मर्म ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ हनुमान सरगरड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद यार सिमृत पुराना कमला पत कबला नहीं जाना कह कबीर सो पर मैं नाही पग लग राम रह सर नाही दिन ते पहर पहर ते करिया आव कटे तन छीजे काल अहेरी फिरे बदक ज्यों कहो कमन बिद कीजे सो दिन आवन लागा मात पिता पाई सुत बनता कहो को है काका रहाओ जब लग जोत काया मैं बरत आपा पशु ना बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझे कहत कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो मन के परमा केवल नाम जपो रे प्राणी परो एक की सरना जो जन पाओ भगत कछ जाने ता को अचरज काहो ज्यो जल जल मैं पैस ना निकसै त्यों टुर मिलियो जुलाहो हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जाओ तन काशी तजै कबीरार मैया कहा निहोरा रहाओ कहत कबीर सुनो रे लोई परम ना भूलो कोई क्या काशी क्या उखर मग मगहर राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोकै जैबो ओछे तप कर बाहुर आबो क्या मांगो किछ थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाओ सोबा राज।

हमरा मन तनु राम को नामा। राम सिमरो राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधेयाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चले था, देही गिरज न खाई, सर्ब सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमा, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यो तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा,

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दुक्रिस्त सुकृत थारो करमरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत शशि तेन लक्ष्मी, कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीटसरी, दादी ले लंका गाड़, ओपाड़ी ले रावण बाण, सल बिसल आण तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीटसरी, पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन। ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति मंग।

हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मिलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम। जय श्री महला चौथा, हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम ओ महाराम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिया हरिओ महाराम। कर कीर्त जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावा। मोको तार कृपा मिलिय गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम। जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वासे आवै, मन तन हरिओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा कर माधव,

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर सम्बन्ध मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतन।

आपे वरदान आवड़ साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभाव है, गुण नानक नाम महाराम। जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा, हर हर कृपा धार मध सूदन, मिल सत संग यो महाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जपियो महाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलियत भारी, गुरमत जपियो महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मै

बेसुमार बेअंत बड़दाता मने गही रहो पेख प्रभु को, जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट उतसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो सरन परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ भाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल

नाव रूप भयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जैसरी महला पंजवा जां कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई तिन कै संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पाव के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चितवो तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे है आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराध्य तिस बिन आन ना के हैं जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकी कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी लाए लय लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या भरणी जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिनसै हर सेवा निश्चल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम जैत सरी महला नावा एको ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लगो तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन कौतायो
रतन राम कढ़ी के पीतर ता को ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा, हर जू राख लियो पत मेरी, जम को त्रास पयो उर अंतर, शरण गही कृपा निज तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फोन, करत पाप अबहारा, पै मरबे को बिसरत नाहन, तह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण, दे दिसको उठताया, कट ही पीतर बसै निरंजन, ताको मर्म ना पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजै, नानक हार पर्यो शरणागत, अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा, मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो, सगरो यो संसारा रहाओ। जाको जोगी खोज तहारे, पायो नाहे तह पारा, सो स्वामी तुम निकट पछानो, रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को, कबू नाहे संभारा, नानक शरण पर्यो जग बंदन, राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा, शंत कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात, चितवो अंधन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। शंत सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक पूरी दर्शन दीजै, नैन हमारे प्रे रंग रंगारे, एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना, ज्यो जल मीना, चात्रक जवैत संतिया, जन नानक गुर पूरा पाया, सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया, मुंह कही ना जेहिया, यार वे हिक डू हिक चाड़े, हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे, नित कर दे भोग बिलासा, तना देख मन चाओ उठंदा, हों कद पाई गुणतासा। जिनी मैंडा लाल रिजाया, हों तिस आग्या मन डेहिया। नानक कह सुन बिनो सुहागण, मुंह दस डिखा पिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा, किस नी सी छंदा, यार वे तै रव्या लालन, मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया, जै तन भाग मथाने, बहा पकड़ ठाकर हों किदी, गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई, जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी, सा मैं पाई, वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया, पिर दयाल सद नवरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी, प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखेंदी, सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा, कर दूजा शंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ, कहन न जाया कथ, नानक प्रभ शरणागति, राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यो राख, हर प्रभ तेरिया, केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख अवगण खते फेरे, नित प्रत सद भूली है, मोह मगन बिकराल माया, तौ प्रसादी कूली है। लूक करत बेकार बिखड़े, प्रभ नेर हूं ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारो, काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण, ऊंचा प्रभ का नाओ, नानक की बेनंतिया, मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ, कां पह जाइए, आठ पैर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना, मनह चिंदिया पाई है, तजमान मोह विकार दूजा, एक स्यों लिवलाई है।
ਅਰਪ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ ਆਪ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈਐ ਸਲੋਕ ਅਰੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕੋ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਜਾ ਕੈ ਹਾਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੰਚੀਐ ਨਾਨਕ ਨਿਭੈ ਸਾਥ ਸ਼ੰਤ ਸਾਥੀ ਅੜਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਦੂਸਰ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਥਾਂਥਨ ਅੰਤਰ ਆਪ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਸੋਏ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਆ ਗਨੀ ਭਜ ਸਰਨ ਸੁਵਾਮੀ ਸੁਖੈ ਗਾਮੀ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਅਨ ਨਾਹੇ ਕੋਏ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਹੋਏ ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ ਅਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ ਜੈਤ ਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਵਿਹਾਵੇ ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ ਜੋਬਨ ਗਿਆ ਬਤੀ।

कहया ना माने सिर खाक शाने जिन संग मन तन जालिया। श्री राम रंग अपार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया। बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया। चरण कमल सरण आए नानक आया। दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया। मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया। हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया। गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया। बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच। पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई। करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा स्मरंत नानक महायग्न ना बिनासन। मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़ै थाए। नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए। पौड़ी रगत बिंद करने मिया अगन उदर मजहार। उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार। बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण। खंडन काल कलेश प्रभ सिमर नानक ने दूरन। हब रंग माने जिस संग तै स्यों लाइए ने हो। सो सहो बिंद न विसरो नानक जिन सुंदर रचिया दे हो। पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग। गृह मंदिर रथ अस दिए रजपले संजोग। सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग। हर सिमर तो तन मन हरिया लै जाए विजोग। साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग। सलोक कुटम्ब जतन करण माया अनेक युद्ध में। हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै। तुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत। साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन भस्म होए। कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत। कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत। जैसा बीजै सो लुणै कर्म हो खेत। अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत। सलोक कोड़दान इस नानंग अनक सो दिन पवित्र तै। उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते। ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे। मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे।
ਪੌੜੀ ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋਏ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਉ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਈ ਆਏ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਨ ਮਰਨ ਪੈ ਕੱਟੀ ਆਏ।

नाद कुरंग कै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सा सा सियाराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्स मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखे बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी उदोत करण हर रमण संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सक्का पाए सुख मिति हूं बाहरे नानक सावेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारे आ भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना स्यों संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पै दयाल।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन मानिया कथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावै पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जसी उत्तम खट दर्शन गावै राम शंकर करोल ते तीस ते आयो। नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावै सब गावत जेत्यो पाम नानक कृपा करी हर जन कौ ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मेर संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। तिस जन कौ मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावै हर आपे ही मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावै। हर आपे पंच तत् विस्थारा वि धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावै। बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवै हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्तार स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त कश नजर ना आवै हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहु सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा वणजारा। बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राख है उदर मजारा सो वैसा हर सेवो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन कौ करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाईए हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा सोई फल पावै फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा किश कीमत कही ना जाए नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावै तवै छड़ाए। राग बैराड़ी महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ। जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। यक अर्ज गुप्तम पेस तो दर गोस कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बेअब परवदगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफत है दिल हेच ना दानी रहाओ।
ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸ ਤੰਗੀਰ ਆਖਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ ਸਭ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ।

जो तुद सेवै तिन भउ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपिया तिस कहो बलिहार, तिसकै संग तरै संसार। कहो नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बांछो तूर। तिलंग महला पंजवां कर तीजा, मेहरवान साहिब मेहरवान, साहिब मेरा मेहरवान। जी सगल कहो दे दान रहाओ, तू काहे डोले प्राणिया। तुद राखैगा सिरजनहार, जिन पैदा इस तू किया सोई दे आधार। जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार, कट कट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वे परवाहो, कर बंदे तू बंदगी जिचर कट मैं साहो। तू समराथया काथया गोचर, जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास। तिलंग महला पंजवां कर तीजा, करते कुदरती मुस्ताक। दीन दुनिया एक तू ही, सब खलक ही ते पाक रहाओ। खिन माहे था प्यो थापदा आचर्ज तेरे रूप। कौन जाने चलत तेरे अंधियारे मैं दीप। खुद खसम खलक जहान अल्लै, मेहरवान खुद आए। दिन सरैन जे तो दियारा दे, सो क्यों दोजक जाए। अजराइल यार बंदे जिस तेरा आधार, गुने उसके सगले आफू तेरे जन देखे दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाओ। गुरमिल नानक बूझिया सदा एक सो गाओ। तिलंग महला पंजवां।

करीमा रहीमा अल्लाह तू गने हाजरा हजूर दर पेश तू मने दरियाओ तू देहंद तू बिस्यार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नीकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपट जित सत सरनावन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे बंधन बांधया सब जग पवे सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलान जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया पासो चितवीया हां टठिया कम ना आवनी विचों सखणिया हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख पुलान से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पिखिया। जा को महला हजूर दूजे नवे किस दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मत कोए। ताहे ओ सारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी।
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਤੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹਿਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਿਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲਤਾਰ ਸੀ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ ਜੋਗ ਵੈ, ਭੋਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਏ, ਤਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਪ ਕਰੇ, ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀ ਜੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹਿ ਅਲਾਏ ਰਹਾਓ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣਨੀ ਸਣੈ ਜਾਏ, ਤੈ ਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਂਢੀਐ, ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜੋ ਦਮ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ।

जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंघी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर संसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सदगुर भेट ता सहसा टूटे तावत वर्ज रहाई है निजर चरे सहे तुन लागे कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहा। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव सराफ कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन बिद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देख्या आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवै तिल जावै, तां की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावै। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको ओंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दाल दलगा, पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुर आगै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस माने, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनांगत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावै, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजै दान हर निमगा। जन नानक नाम मिलै सुख पावै, हम नाम विटौं सद घुमगा।

मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठै हर उपदेशया हर पेटिया राव निसंग रहाओ। मुंद एआणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नव लाया सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा शुद्ध ना होई आन दिन कर्म करै बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरै रंग कदे ना चढ़ै जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा मन।

साध गुरमत नगरी खोज खोज आई, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खन अंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई। हों हर पर प्यारा टूंग टूंडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेला हर पाई। सुही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए। गुरमुख हर हर नाम समाए, हर रंग राता मन रंग माने। सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ। हर रंग को लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई। मन मुख मुग्ध नर कोरा होए, जे सौ लोचे रंग ना हो वै कोय। नदर करे ता सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए, हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पै पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शिपा कहै बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े, हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका मुख अड़सठ तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अंधन परसे, जय कृपा करे हर राए। सूही महला चौथा तिन्नी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, तिन की बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तिस हलत पलत मोहकारा, से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक पवे इशारा, जिस घर विरती सोई जाने जगत गुर नानक, पूछ करो बिचारा चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सूही महला चौथा जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिद लया ना जाई, हर तन संचिए पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटी है, होर थै होरत उपाए हर तन कितै ना पाई, हर रतने का वापारिया हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक, हर तन नाल अमृत वे लैवत हर भक्ति हर लिवलाई, हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुट नाही, हालत पलत हर तने की भगता को मिली वड्याई, हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा, एहो हर तन अग्नि तस्करै पानी है जमदूतै किसे का गवाया न जाई, हर तन का ओचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई, सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई, हलते विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया, अगे पलत सागत हर दरगे टोई ना पाई, इस हर तन का साहो हर आप है संतो, जिसनों दे सो हर तन लद चलाई, इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सूही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान, गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ, सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है, जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सो नेफल सब अगे

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी वखियान।

कर सतमा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहेब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना साकाऊ तू ठाकर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम तर सोई ज्यो पावै त्यो राख मेरे साहेब मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ मैं ताण दी बाण तू है मेरे स्वामी मैं तुझ आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगंत जय बकरी सिंह एक तै थाए राखे मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय हर की वड़ियाई देखो संतो हर निमाणिया मान देवाए ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किछे आपे जाने क्या तुद पै आग सुनाई है बुरा भला तू सबके सूझै जिहा को करे तिहा को पाई है मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने बुरा भला तू सबके सूझै तुद भावै तवै बुलावै रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई एक ना सतगुर मेल सुख देवै एक मन मुख तंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुझ सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करै तेहा को होवै बिन नदरी नाही को पेख तेरी वड़ियाई तू है जाने सब तुदनो नित ते आए जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै जन नानक सो थाए पाए सुही महला चौथा जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर तिनके सबरो गवाए ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया तिन पवित्र परम पद पाए।

ब्रह्मा बिशर महादेव त्रै गुण रोगी विचहो मैं कार कमाई जिन किए तिसै न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवें बख्श रहाओ सब जियो पिंड दिया तुद आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरिठ सब साजी कोई सेवा करो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मन मुख करै से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतै गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास भरम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सत नाही ना को आवै ना को जाही गुरपूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवा कीता लोड़ै सो प्रभ होए तुद बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की रख लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारै कछु ना पाईऐ साच लगै ताह मैं जाइऐ जिसनो लाए लय सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद भावै ता आणै रास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभ सदा ते आए सुही महला पंजवां तन सोहागन जो प्रभु पछानै मानै हुक्म तजै अभमानै प्रेसे राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सास सुहागण अंक समावै गर्भ घेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यो हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे ग्रह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सदजा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगमे अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई है अंत न लही है मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभ हाथ दे निस्तारे सुही महला पंजवा कर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महल ना पावे कह तो पहुता जो प्रेमाने तिनकी रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ पेख दिखावे सच ना कमावे कह तो महली निकट ना आवे अतीत सदाए माया का माता मन ही प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझे ना याना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा सात जना का दर्शन जीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनते आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सागत फिरता नीर बरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता गुनहगार नून हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवा।

संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जमदूत बिदारे। जा की तीरक इस मने सुधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो कल खरना। कूड़े मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। किरपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, घट घट

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हों जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा, जा कै सिमरन कछ भउ ना ब्यापै।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधै नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बिकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना।

दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंतु तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवै दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किस तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानो। तिसका पनिहारा, पाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड। ताहू मैं पाओ, राख लेहो एहो बिखई जियो। देहो अपना नाओ रहाओ, जाते नाही को सुखी। ता कै पाछे जाओ, छोड़ जाहे जो सगल कहो। फिर लपटाओ, करो कृपा करना पते। तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती। साध संग समाओ, राग सुही महला पंजवा। कर पंजवा पड़ताल, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया, मोहन लालना। जप मन गोबिंद एकै, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया। पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया। निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया, कीर्तन जुरिया। बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसे आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, करो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया, राग सुही महला पंजवा। कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा रहाओ,
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ ਸਾਈ ਭਗਤ।

सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णा जो प्रभु अपने पाणे, कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पहे निकाणे।

प्यास चुकाई मेरे राम राय तुद चित आया उबरे तेरी टेक परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध कूब ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकर रचन।

मेरे राम राय मुझते कछु न होई, आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटे कत हूं काची देह आनी, कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते घट घट तुही ते आई है, तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना। सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के काम। मेरे राम हर जन कह।

किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सूही महला पंजवां सगल त्याग गुर

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्यां इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसे ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबी है सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबर है बक्से बक्षण हार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होने गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैरते आ सब जो ही जमकाल जियो जिनका कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना

मैं तुझ ऊपर बहु माणिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वे खाल एहा पाई मुदा तड़ी नित हृदय रखा समाल पाव जुलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुरथी वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम न पुजन तेरिया तू साही हूं साहो हौ कह ना सका गुण तेरिया सहियां तऊ असंख मन्यो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देहे दर्स रंग माणिया जय डिठे मन तीरी है किल विख वंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सहे सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाए सूही महला पंजवां सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन मरण मोह दुख।

नरक सुर्ग अवतार माया तंदया। सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारया, नाम बिना सुख नाहें सर पर हारया। आवै जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिन कौ भय दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजै कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चिड़ंदियां, कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावे आ से अंबी शावड़ी यह जियो। से गुण मंजना यावनी, हो कह जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा, हो क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा, हो सतगुर बाणा ते रह जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो। से वस्तु सह दितिया, मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो। हौ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली साहोरै क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो। तै सह नालो मुती अस दुखा को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा, एक नानक की अरदास जियो। सवरा ती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी राह जियो। तुद अंतर हो सुख वसा, तू मंत्र साबाह जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीखो दास जियो। पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल आकाश जियो। पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परिया जियो। पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो। पाणे सह पीहावला यावन जान मुया जियो। तू सौ अगमा तोलवा, हों कह कह टह पैया जियो। क्या मांगा क्या कह सुनी, मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुरसबदी सह पाया सच नानक की अरदास जियो। सूही महला पंजवां गुणवंती, जो दिसे गुरसिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुरसज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस्यो

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होए दासा जीवित मरिया भव जल तरिया जे थीवे कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजै जिस लावै सै ध्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हौ बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सत कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसकै बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्त कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो जिसनो तेरी टेक सो सदा साजी वही बलराम जी हो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाहीं ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्स भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करण हारे उपजया तत ज्ञान साहुरे पेई एक हर बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना सकै पिन कर बलराम जियो बिस्म पेखै बिस्म सुनिया बिस्माद नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहा समाया जिस ते उपजया तिस माहे समाया कीमत कहन ना जाए जिसके चलत ना जाही लखणे नानक तसै ते आए राग सूही शंत महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग अंदन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुरचरण लागे परम भागे का सगल सवारिया सुन सरवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागै बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगै अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रहस्य उपजे मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धारो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण त्याए सफल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सवाए हर जप अपने प्रभावा जप एक अलाख्या पार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिरमंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ ते आया सगल इच्छा पुनिया हाँ ताप बिन से सदा सरसे प्रभ मिले चिरी विशुन्या मन सांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा भज जगदीसरै
ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੜਦਾਣਾ ਕਰ ਮੈਂ ਰਮਤ ਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਦਿਹਾਈ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰਿਣ ਹੋ ਵਿਜੈ ਤਾਂ ਗਤ ਜੀ ਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕਾ ਠਾਕਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੁਮ ਗੌਹਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਪਿਰ ਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੂਚੇ ਹਉ ਇਤਨੀ ਕਲਹਰੀਆ ਰਾਮ ਹਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾਂ ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨਾ ਚਰਣ ਹੈ ਸਰਣੀ ਦਾਸੈ ਦਾਸੀ ਮਨ ਮੌਲੈ ਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ਤੁਝ ਉਪਰ

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम, हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंधप जी प्राण मन भाणा राम, जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्वरया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुर बाणा। ऐसा गुरवट भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम, जन्म जन्म के किलवखे उतर हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है गुरचरणी लागे परम पौ भागे, मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया या मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका साथ तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वै जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कड़कट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम, सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम। कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना, हर हर जप जपिया दिन राती लागे सहित आना। काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै हर गुण सुनिए अबनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महा बिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड़ियाई एहो तन होए वडभागा राम, एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकर दीन दयाला।
मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सोही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम। हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी कथ कहानी। भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभ भय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजह नितवाजे पार ब्रह्म मन उठा राम। गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया। घर मैं नव निध परे भंडारा राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न विसरै।

अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, करता है आप वसाया राम, करता है आप वसाया सर्व सुख पाया, पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे पूर्ण परमेश्वर, कार्य आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन एहो थान सुहाया, घर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराध है, कटिया जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभ बनासी, हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरे, नानक सदबल जासी, दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम, आद जुगाद भगतन का राखा, सो प्रपया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला, दय दिस पूर रहया जा स्वामी, कीमत कहन ना जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीम रखाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज भगत पव पवंजन, अनहद वाजे तुनिया राम, अनहद चुनकारे तत विचारे, संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराध्य मैल सब काटे, किलवे सगले खोवे, तह जन्म ना मरना आवन जाना, बहुन ना पाइय जोनी है, नानक गुर परमेसर पाया, जिस प्रसाद इच पुनी है, सूही महला पंजवा, संता के कार्य आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया, नवनिध सिद्ध रिध दीने करते, तोट न आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दास सवाई राम, दास सवाई ने खुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिगन सगले उठ नाठे, दुख ना नेड़े आया, सांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूक सवाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम, जिसका कार्य तिन्ही किया, मानस क्या वेचारा राम, भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करे जयकारा राम, गुण गाए गोविंद अंध उपजे, साध संगत संग बनी, जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी, आठ साठ तीर्थ पुन किरिया, महा निर्मल चारा, पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा, गुण निधान मेरा प्रभ करता, उसत कौन करी जय राम, संतां की बेनती स्वामी, नाम महारस दी जय राम, नाम दी जय दान की जय, बिसर नाही एक खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाइए अंदिनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती, मंतन अमृत पीजै, बिनवंत नानक इच्छ पुनी, पेख दर्शन जीजै, राग सुही महला पंजवा, शंत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हौ सम्मल थकी जी, ओह कदे ना बोले कौरा,
कौड़ा बोल न जानै पूर्ण भगवान औगुण को ना चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्नै कहले घट घट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हम मैं बिंठी गाठे सब कै माधो सब हूं ते बाहर राग दोख ते न्यारो नानक दास गोविंद शरण आई हर प्रीतम मने सदारो मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै नाया वै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा

तब लग प्राणी तसै सरेवो, जब लग कट मैं सासा, जे कट जाए ता पाओ ना जासी, हर के चरण निवासा, जिसको शब्द बसावे अंतर, चूकै तसै प्यासा, हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मन जन टाले पासा, जो जन जान भजै अवगत।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मन है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपक है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरुष लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काट सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

आई। जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुझते, तेरी सब असनाई तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहु बेगाना पौका स्तनताई। भगतहीण नाक जे होएगा, ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेसकल अंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवां।

अगमा गोचर लाख्या पारा, चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना, कड़कड़ जोत तुम्हारी, सिख मत सब तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावन तेरे, जी जंत सब सरन तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान, तू दाता नाम प्रमाण, ऐसा नाम निरंजन देओ, हौ जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ, माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए, एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया, अवरना सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हम मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए।

गुरमुख नाम मिलै सा वास, हर कृपा तारी दसन दास, जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया। दूजा पावना दे लिव लागणो, जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दा

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे परम पुलाने से मनमुख कही है नारोवार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ता को जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब तिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगै तसे आए सब सच दिखाले ता सच समाए आपे लिव तात है आपे आप आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवको सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए अंदन लागै सही ध्याना रहाओ क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंचै तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तवै कोई चालै जो हर पावै भगवाना कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा एक ना करमै दे वड़ियाई एक परम पवै अभमाना बिलावल महला तीजा पूरा थट बनाया पूरा वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को तरो गुमाना सतगुर की जिसनो मत आवै सो सतगुर माए समाना एह बाणी जो जियो जाने तिसे अंतर रवै हर नामा रहाओ चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कलमै कीर्त हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना कहत नानक सच्चे स्यों प्रीत लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हाँ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावै सह सुभाए रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आव वसै मन आए आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेलै मेल मिलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निज कर वासा हर गुण गाए रंग चलू लै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साज समाए अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हाँ मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुरते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरा गुरमुख मांगाओ तेरा नाम निवाजा रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसार वेखै
बहु न मरै न जंपे खै कर ही मैं सब कोट निदान। सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावे एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जै देखा तरिया समाई। सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुरपुरा पाया। अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द वत मीठा लाया। नानक तृष्ण बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यों करना। ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजे जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया। हर हृदय हर बसना रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना। ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना। ओह ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति शरणागत पुरखिया जन्मा। कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन भज राम नाम रामा गुरमत हर रस पाईए होर त्यागो ने फल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा। ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वडकर्मा। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा। तुमरी सेवा करना सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी। मेरे सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा। तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोह तरा। सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा। ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम्हार मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा। दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई। मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोथ है कल युग खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिखत लिखे गुण गाए। मिल संगत पार परो रहाओ काया नगर में राम रसी उत्तम क्यों पाई अवदे जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो। राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संत जनो। चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो। बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी। गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेवो दिन सो सब रैनी। हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो। हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अन क्यो पाव चितविय बहु तेरे सा होवै जे बात होवै नी। अपना पला सब कोई बंश है सो करे जे मेरा चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन एह बात कठैनी। आन दिन हर हर नाम ते आवो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी
हम जंत तू पुरख जंतनी जन नानके प्रभ करते स्वामी जो पावे तवे बुलैनी बिलावल महला चौथा अंध मूल त्यायो पुरखोत्म अंधन अंध अनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके शंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बद्धक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे सेव उधरे वडभागी सेव करन दे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर पर पुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुरु बोहित।

देख पतंगा सगल सिंगार करे नहीं पावै जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेव के अपनी लायो सेव। बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव धरत पुनीत पई गुण गाए दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसादना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ रखवाले जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़ हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मन तन आधार बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा यानड़िए कै कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन्हें अपना प्रभ जाता। हर नाम आराध नाम वखाणे हर नाम में ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखण पावा। वड भागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिन्ना वासो। अमृत नाम आराधिए निर्मल मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जमकी काणे। तना प्राप दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणे। ऊंच अपार

कनेरे, पशु प्रेत मुगत कवतारे, पहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा, बिखै बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे, बुड गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा शक्ति काई सादा दासी थियो, नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संगना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते, इन संग सुख नाम पाया। तन तन हर सा जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वट पागणी सखिए, संता संग समाई है, तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै, चरण कमल निवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना, निश्चर सरणी पाई है, प्रेम बिछो ना मोह व्यापै, नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे, रतड़े सह सुभाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच पुजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया, कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद, एक रूप सगलो पासारा, आपे बनजे आप ब्योहारा, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए, रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा, आपे जल पा आप ही तिरंगा, आप ही मंदिर आपै सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपै जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आपो पावन आप सुधरना, आप करावन दोष ना लेना, आपन बचनो आप ही।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुरे आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काट है पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंधकूप ते कर गै लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भय परसीना। बिलावल महा

उठा कर अविनाश। ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगी सर कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रपेटिया जाके पूर्ण करमा। बिलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप कर जो तारिया सतगुरु कर हर आप। खात खर्चत निबहत रहे गुरसबद खूट पूर्ण पई समगरी कबहू नहीं टूट रहाओ। साध संग आराधना हर निद्या पार धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार। भगत आराध्या एक रंग गोबिंद गोपाल राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्य पै रास करतारपुर करता वसै संतन के पास रहाओ। बिघन न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास। तोट न आवे कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मंतन बसे प्रभ अगम अपार। बस्त कमावत सब सुखी किश ऊन दिसै संत प्रसाद पेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिया होइय आरोग रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग। रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग साध संगत कै वारण मिलया संजोग। जिस सिमरत सुख पाई है बिन सहबे होग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आवरियो पाप सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया। गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया। रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा कर धर मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान। आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चित वै साध जान सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज रामदास पुर कीने गुरदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागै नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागै। बिलावल महला पंजवा मंतन प्रभ आराधी है मिल साध समागै उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम पागै। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै तंत मंत न जो है तित ताख न लागै। रहाओ काम क्रोध मदमान मोह बिन से अनरागै आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे जम कंकर निर्णय आवई गुरसिख प्यारे। रहाओ

साथ रहाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा का वड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए, जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अघाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायण आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार।

राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुलिया नूपा रहाओ। बिस्मन बिस्म पय जौ पेखियो कहन न जाए वड्याई मगन पय ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रिया पारा एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जहां से राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनै मैं जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बखै ठगौरी खावत है। तिरण को मंदिर साज सवारो पावक तलै जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहे मदमावत है। जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी जोफा हावत है कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम या पारिया मोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पांत बोली रहाओ। सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रेरवी सुहागन आत्मी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ। पूर्ण पूर्ण रहो संपूर्ण शीतल सांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई रहाओ जय महाभयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अविनाशी करता पतत पवित एक निमख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है। कित बिदिया कित संयम पाई है कौ सुरजन के जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरना सा कहो गुरपुर मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे।

बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हों क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कौ तुही पछाने, जो जियन मैं होता, रे मन काए कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पहे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकूप मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिटे आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ।

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, अगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइय हो निदान, जन मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो

आप रहाओ कर कृपा हस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा कृष्ण बुझी मन तन सहित राप अनाथ को नाथ शरण समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वच्छल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक आलाप बिलावल महला पंजवा जिस ते उपजत सह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड पागी अंतर जामी सुगण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समर्थ निमाण्या को मान ब्रह्म पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सा सा से आराध्य नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बिलावल महला पंजवा दो वै थाव रखे गुरसूरे हल्त पल्त पार ब्रह्म सवारे कार्य होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे आवन जान रहे थित पाई जन मरण के मिटे बिसूरे प्रम पै तरे छुट्टे पै जमके कट कट एक रहया पर पूरे नानक सरन परयो दुख पंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देखत दोख नसे कबो न होवो दृष्टया गोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण्या धार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार सुमारी सास सास प्रभ तुझे चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पहर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजवा तन तन योबन चलत गया राम नाम का भजन ना कीनो करत विकार निस्पोर पया रहाओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मुठाओ पाप करत न परी दया महाविकार कोर दुख सागर तिसमें प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बहां पकर प्रभ काढ लया बिलावल महला पंजवा आपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चख मारत कुशल पया मेरे पाई मीत रहाओ गई ब्याज्यो पाद सब नासी अंगीकार कियो करतार सांत सुख आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय रहार जियो पिंड धनदास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने कव रखन हारा नानक दास सदा है चेरा बिलावल महला पंजवा गोविंद सिमर होवा कल्याण मिट्टियो पाद भया सुख साचा यंत्र जामी समरिया जान रहाओ जिसके जीतन किए सुखाले भगत जना को साचा तान दास अपने किया पे राखी पै पंजनी ऊपर करते मान पई मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काढे शान सुख सहज आनंद कन्हेरे नानक जीवे हर गुण वखाण बिलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ पय कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जप जप साधु पय निहाल रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दुखी सगले पय रवाल कंठ लाए राखे जाने अपने उधर लिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल कर आए निंदक के मुख होए काल कहो नानक मेरा सदगुर पूरा गुर प्रसाद प्रभय निहाल बिलावल महला पंजवा मूलाल नस्यों प्रीत बनी रहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाऊं श्याम सुंदर कहो अकथ कथा जा की बात सुनी
ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਕਹੀਅਤ ਹੈ, ਮੋਇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਪ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਧਰ ਮਨ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਰਸਨਾ ਰਵੋ ਏਕ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੋ ਮਾਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਕਹੋ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ, ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤ ਸਵਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈਦਾਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਖ ਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵਾ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੋ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਰਹਾਓ। ਬਿਸਵੰਪਰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਖਣ ਪਰਨ, ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਵਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਤੁਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਡਰਨ। ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਪ ਦੇ ਕਰ ਅਠਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਈਗੈ ਨਿਰਗੁਣ ਯੁਗੈ ਸਰਗੁਣ, ਕੇਲ ਕਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਆਪਨ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਬਸੇਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਨ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਇਆ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਠਾਕਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਚੇਰਾ। ਕਾ ਕਉ ਦਰਾਓ ਕਾ ਸਿਉ ਬਲ ਬੰਚਾ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਤੈ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਨਾਨਕ, ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਅਨਹੇਰਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਟਾਕਨ ਟਾਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਮੋਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਨ ਚਰਨ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਣਿਓ, ਪੇਖਿਓ ਠੌਰ ਨਾਹੀ ਕਛ ਠੀਠ ਮੁਕਰਨ, ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੋ, ਕੋਟ ਅੱਗਾ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਹਰਨ, ਹਮਰੋ ਸਹਾਓ ਸਦਾ ਸਦ ਪੂਲਨ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਧ ਪਥ ਦਿਓ ਧਰਨ, ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਬਿਲਾਵਲ

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही हरे बस, हर नाम मामर संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल माने, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दीख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यो पावै त्यो मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्क तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गतमित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अनबोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जलत अगर मैं जने आपो धारे, करे अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ वीर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया नंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पतो धारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औध बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला

तन तन कलातो सब देख अभमाना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ, कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्याई जाइऐ, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दरस होए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठ अवमान, बिन नामै पाज रह निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाय वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरो दस द्वार हैं जाके, अहनसो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जम जागाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जाणै, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है जोत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜਈਆ। ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚੈ ਪਰਮ ਪਦ ਪਈਆ। ਇਹੋ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਜਿਤਲਾ ਵੈਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਈਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸਾਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਕਈਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਹੀਆ। ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਲਾਲ ਜੇ ਵੇਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਪਵੈ ਤਿਤਈਆ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਾਸ ਹੋਏ ਰਹੀਐ, ਜੋ ਜਨ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਿਜ ਪਈਆ। ਮਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪ ਧਰੋ ਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੈਂ ਕਥ ਕਥਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੇ, ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਦਿਖਈਆ। ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਈਆ। ਇਹੋ ਮਨ ਨਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਗੈ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਤੂਰ ਵਜਈਆ। ਹਰ ਹਰ ਉਸਤ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਖ ਰਖ ਚਰਨ ਹਰ ਤਾਲ ਪੂਰਈਆ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮਨ ਗਾਵੈ, ਰਸ ਰਸਾਲ ਰਸ ਸ਼ਬਦ ਰਵਈਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਧਾਰ ਚੋਐ ਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨਹੀ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਮਨ ਅਠ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਬਾਲੂ ਕਰ ਉਸਰਈਆ। ਆਵੈ ਲਹਿਰ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਕੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਟੈ ਪਈਆ। ਹਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਹਰ ਹੈ ਆਪੇ, ਇਹੋ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਖਿਲਈਆ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਲ ਜਲੈ ਸਮਾਵੈ, ਨਾਨਕੇ ਆਪੇ ਆਪ ਰਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਮਨ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤਨ ਭਸਮ ਦਰੜਈਆ। ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਮਿਟ ਗਈਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ। ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ। ਰਹਾਓ ਤਜੈ ਗ੍ਰਸਤ ਭਇਆ ਬਨਵਾਸੀ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੈ ਨਾ ਟਕਈਆ। ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਕਰ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ। ਤੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਆਸਾ ਆਸ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਰਈਆ। ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ। ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਵਾ, ਮਨ ਦੈ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਗਮਨ ਕਰਈਆ।
पर पवन करै बुझै नहीं तृष्णा, मिल संग साध दया कर लहिया। आसन सिद्ध सिखै बहु तेरे, मन मांगै रिद सिद्ध चेटक चेटकैया। तृप्त संतोख मन शांत ना आवै, मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेर जो सेतज उत्पुज, सब वर्ण रूप जी जंतो पैया। साधु शरण पर ऐसो उबरै, खत्री ब्राह्मण सूद वैसो चंडाल चंडैया। नामा जय देव कबीर त्रिलोचन, औ जात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत, तन तन्ना जट सहन मिलया हरदैया। संत जना की हर पैज रखाई, भगत वछल अंगीकार करैया। नानक शरण परे जग जीवन, हर हर कृपा तार रखैया। बिलावल महला चौथा, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। सुन गुरबचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हाँ आकल बिकल पई गुर देखे। हाँ लोट पोट होए पैया रहाओ, हाँ निरखत फिराओ सब दे दिसंतर। मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देओ गुरे आगे। जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा। हृदय अंतर मंत्र मीठ लगैया, मस्त काट देओ चरणा तल। जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधै। गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वछल उवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछै पैया। खिमा सिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनया, मन मोती चूर बड गहन गहनैया। हर हर सरदा सेज विशाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किश की जय, सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया। कियो सिंगार मिलन कह ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करै तेरे वस पैया। दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर शरण समैया। बिलावल महला चौथा, मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का। खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी। जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मंतन एक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया। वैदिक नाटक देख भुलाने, मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हाँ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमलै अमली मर गैया। जिन को प्यास होए प्रभ केरी, तिने अवर ना पावै। बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावै। हाँ तिस विटो बल बल घूम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जा सत सत सतगुर शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकर। महल ना पावै मनमुख परमैया, गुर गुर कर तो शरण जे आवै। प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया, कर कर क्रिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लोबैया, बेसुवै का बेसुआ कै घर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जा हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई। आपे कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा तारी। बहां पकड़ नानक कढ लैया।
राग बिलावल महला पंजवा अष्टपदी घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार हौ जाओ सद बलिहार, मन प्रीत लागी ताहे तज आन कत ना जाहे। हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन, चढ़ नाव संत उधार पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत, तज गए पाप बेकार हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद चख आनंद पूर्ण साध, नह डोलिए इतयूत प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जमना पेखे नैन सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल।

गोबिंद पूर ने आस एक निमख रहन ना जाए वड़ भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर जो मीन जल सो हेत अल कमल पहन ना पेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यो तरन भरत प्राण ज्यो लोभिए धन दान ज्यो दूध जलै संजोग ज्यो महा खुदियारथ भोग ज्यो मात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हिरत निसंग महंग लैका मैं बंद ज्यो ग्रस्त बिखई तंद ज्यो जुआर बिसन ना जाए हर नानके हो मन लाए कुरंक ना दैने हो चात्रक चाहत में हो जन जीवना सतसंग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले कुल समूह कर तो उदार संसार उत्तर सुपार हर चरण बोस्तता है मिल साध संग जसगा है हर पैज रखे मुरार हर नानक शरण द्वार बिलावल महला पहला थिति कर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक में एक अंकार निराला अमरा जोनी जात ना जाला आगमा गोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया जो देख दिखावै तिसको बल जाई गुरप्रसाद परम पद पाई क्या जब जापो बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल कर दीसै रहाओ दूजे पाए लगे पछताने जमदर बांधे आवन जाने क्या लै आवै क्या ले जाहे सिर जमकाल से चोटा खाहे बिन गुर शब्द ना छूट सकोए पाखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोड़ विछोड़ धरत आकाश किए बैसन को थाओ रात दिनंत किए पौ पहाओ जिन किए कर वेखण हारा अवर ना दूजा सिरजन हारा तृतीया ब्रह्मा बिशन महेसा देवी देवो पाए वेसा ज्योति जाति गणत ना आवै जिन साजी सो कीमत पावै कीमत पाए रहा भरपूर किस नेड़ै किस आखां दूर चौथे उपाए चारे बेदा खानी चारे बाणी पेदा अष्ट दशा खड़की ने उपाए सो बुझे जसिया बुझाए तीन समावै चौथै वासा प्रणवत नानक हम ताके दासा पंचमी पंचभूत बेताला आपा गोचर पुरख निराला एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे एक रस चाख शब्द तृप्तासे एक रंगराते एक मरतूर एक दर कर साचै देख दूर झूठे को नाही पत नाओ कबो न सूचा काला काओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी भरमै मुक्त ना होए तौ छूटै जां खसम छड़ाए गुरमत मेले भगदड़ाए।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रेका नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोहया नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोहे नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

है रे, मानस बपरा मूसा कीनो मीच बलैया खई है रे, तन मंतार निरतन मने ताकि कछु ना कानी रे, राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बडानी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे, आवे ना जाए ना कब हूं मरते पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एह तजो जी जानी रे, कहत कबीर सुनो रे संतो मिल है सारंग पानी रे, बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो, हर गुण कथत सुनत बौरानो, मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सियानी मैं बौरा, मैं बिगड़ियो बिगड़े मत औरा, रहाओ आपन बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो प्रमोरा, मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे परम भूलो मत कोई, सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने, अबे ना माता सो कबो ना माता, कह कबीर रामै रंगराता, बिलावल गृहोता जबान खंड जाइए चुन खाइए कंदा, अजो बेकार ना छोड़ई पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरो पाव जल निद पारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी, रहाओ बिखे बिखे बिखे बिखे की बसना, तजी ने जाई अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई, जरा जीवन जोबन गया किशकिया ना निका, एहो जियरा निर्मोल को कौडी लग मीका, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी, बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो, ताना बाना कशुना सूजै हर हर रस लपटो, हमारे कुल कौने राम कयो, जबकि माला लई निपूते तब ते सुख ना पयो, रहाओ सुनो जेठानी सुनो देरानी, अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए, एहो मुंडिया क्यों नाम यो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुर नाम दयो, संत प्रहलाद की पै जन राखी हर नाक्ष नख विदरियो, कर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो, कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उतरियो, बिलावल को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा, रहाओ तेरो जन होए सोए कत डोले, तीन पवन परशा जा, हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा, चेत या चेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा, कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद निवाजा, बिलावल राख लिहो हमते बिगरी, सील धर्म जब भगत ना कीनी हम हाँ अपमान टेढ़ पगरी, रहाओ अमर जान संचिए काया ए मिथ्या काची गगरी, जिन्हें निवाय साज हम किए तिसै बिसार अवर लगरी, संदक तोहे साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए बिनती सुनियो मत कालो जमकी खबरी, बिलावल दर मांदे ठंडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार, रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवणन सुनियत सुजस तुमार, मांगों का हे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार, जय देव नामा बिप सुदामा तिन कहो कृपा पई है अपार, कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत ना बार, बिलावल डंडा मुंद्रा खिंथाया दारी, भ्रम कै पाए पवै पेख तारी, आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर भज बवरे, रहाओ जे तू जाचै सोत्र पवन भोगी, कह कबीर केसो जगजोगी, बिलावल
ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਬਿਸਾਰੇ ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਬੇਚਾਰੇ ਰਹਾਉ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ ਤ੍ਰਿਗ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਮਤ ਬੁੱਧ ਫੰਨੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਉ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਾਖਉ ਬਾਂਧੇ ਆਬ ਚੰਨੀ ਕਿਆ ਖੇਤੀ ਕਿਆ ਲੇਵਾ ਦੇਈ ਪਰਪੰਚ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਅੰਤ ਬਗੂਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲ ਨਿਦਾਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਪੀਤਰੇ ਆਛੈ ਕਮਲਿਆਨੂਪ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਰਮੋਤ ਪਰਖੋਤਮ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰੇਖ ਨਾ ਰੂਪ ਰੇ ਮਨ ਹਰ ਪਜ ਪ੍ਰਮ ਤਜੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਰਾਮ ਰਹਾਉ ਆਵਤ ਕਛੂ ਨਾ ਦੀਸਈ ਨਹਿ ਦਿਸੈ ਜਾਤ ਜਹਿ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਤਹੀ ਜੈਸੇ ਪੁਰਵਨ ਪਾਤ ਮਿਥਿਆ ਕਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮਨ ਮੰਜ ਮੁਰਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਜਨ ਮਰਨ ਕਾ ਭਰਮ ਗਯਾ ਗੋਬਿੰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਵਤ ਸੁਨ ਸਮਾਨਿਆ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜਾਗੀ ਰਹਾਉ ਕਾਸੀ ਤੇ ਧੁਨੀ ਉਪਜੈ ਤੁਨ ਕਾਸੀ ਜਾਈ ਕਾਸੀ ਫੂਟੀ ਪੰਡਤਾ ਤੁਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ ਤ੍ਰਿਗੁਟੀ ਸੰਦ ਮੈਂ ਪੇਖਿਆ ਕਟ ਹੂੰ ਕਟ ਜਾਗੀ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਸਮਾਚਰੀ ਕਟ ਮਾਹੇ ਤਿਆਗੀ ਆਪ ਆਪ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇਜ ਤੇਜ ਸਮਾਨਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨਮਾਨਾ ਬਿਲਾਵਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਬਸੈ ਸੋ ਜਨ ਕਿਉ ਡੋਲੈ ਦੇਵ ਮਾਨਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਉ ਨਿਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਜਸ ਬੋਲੈ ਦੇਵ ਰਹਾਉ ਤਬ ਇਹ ਮਤ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਪੇਖੈ ਕੁਟਲ ਗਾਂਠ

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत की ओ लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख बिसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्द देख सबको हसै।

ब्राह्मण बैस सूदयर खत्री डोम चंडार मलेश मनसोए होए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पुनीत कुटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए। पंडित सूर शत्रपद राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे पुरैन पात रह जल समीप पन रविदास जन्मे जग ओए। बाणी सदने की राग बिलावल एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरपकन्या के कारण है एक भया पेख तारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी तब गुण कहां जगत गोरा जव कर्म ना नासै सिंह सरन कत जाई है जव जंपक ग्रासै रहाओ एक बूंद जल कारण।

तब पेटे गुरसा दयाल दिन रहन नानक नाम ते आए सुख सहज आनंद हरन आए। गोंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारा गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार मत को परम।

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपुरे की बेअंत वडाई, गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करण है जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाई है भाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जा की कोई न मिटे दात, गुर परमेश्वर एको जान, ज्योतिष पावे सो प्रमाण, रहाओ गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरचरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाइय वड भागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर आहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुरु दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार।

रे महावत तुझ दारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह त्यान, वा कर दे बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना यो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत ना को उपाई रहाओ। ना यो गृही ना यो दासी, ना यो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

देख। इस मरते कौ जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सरचट बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई, आवत जात नागसर हो।

कहे वाकाय अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागे दोख। तन सोहागन महापवीत, तपेत पीसर डोले चीत। रहाओ सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत से सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तव लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन पवन त्रैलिया, दस अठ पुराण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है शेदे। सोहागन उर्वार ना पार, पांच नारद कै संग बेदवार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै। कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै। रहा जारो तिसे जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै। रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है। कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी। कह कबीर एक कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे। कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार। रहाओ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिए पर चै साचे। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजार है सो दे, पांच पलीते को प्रबोद। नौ नायक की भक्त पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात ना करे, इंद्री के जतन नाम उचरे। कहो कबीर हम ऐसे लखनो, धन गुरुदेव अतरूप बिचखनो। गोंड

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड। नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हे रहो राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सुनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डार तेहरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट काव मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जन उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेड़ता लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सदगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर कर तो नहीं दुख जमाए रहाओ हर हर नक्श हरे पर

कपटै परी सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जपद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसे नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पियावत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कु काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या। जय देहोरा नाम सीत। रागौंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशानं, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीटदास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो 68 तीर्थ नावे, जे हो द्वादश शिला पूजावै, जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै। साध का निंद

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करै निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महा।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंधकूप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबर भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कहिया। दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्याने मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह

करे, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पितर रहे निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिये जीवत आयो मरिये, रहाओ दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने, पत चोली मंगण कै ताई पीखिया नाम पड़े, बाबा गोरख जागे गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साध क्यार योगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह ऐसे भगत मिले, जन नानक तिन जम क्या करे, राम कली महला पहला। सुन मा शिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे, अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। पिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चितलावे, नानक बोले अमृत बाणी, सुन मा शिंदरा औदू निशानी, आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए, प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संध मिलाए, दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए, राम कली महला पहला। हम डोलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए, निहचो दे वड़ियाई, गुरतार तारन हारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया, जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेसर नानक पेटे ओ, साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरतर लाइए एत, तन कर तुलहा लंगे जेत, अंतर पाहित से तू रख, एनस दीवा बल अथक,

पाए जिन किश किया सो किश करै अपनी कीमत आपे तरै गुरमुख प्रगट होवा हर राए ना को आवै ना को जाए लोक तिकार कहै मंग।

रामकली महला पहला, सागर में बूंद, बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ, दिन में रहण रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत, जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

सो हर जनो हर प्रभु भावै, अहनस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावै रहाओ। धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरे सच समाया, गुर आदि पुरख हर पाया, सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सतगुर भरम।

मेरे एक खैन प्राण ना रह बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरसरणी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर से नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदयंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे ता का अंत ना पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जे वड़ भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राख है कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित न आवे मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तो दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नरदेव पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवे निध पावो इन बे तत् बेलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले है मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया। जन नानक सत कुरबानी राम कली महला पंजवा। आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया ता उतरी सगल बेयोगनी। ए बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने।
ਅਚਰਜ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਮੋਲ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਭੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ। ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਚੀਤਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਇਕ ਨਾਮ ਕੈ ਆਧਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਊਨ ਨ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ।

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चाल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई कह तुर्क कोई कह हिंदू, कोई बंश है पिस्त कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नै बिनसै अविनासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली।

कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो बड़े भाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानक आखे हो बीचार राग राम कली महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चार पुकारे ना तू मानै खट पी एका बात वखानै दस अष्टी मिले को कहया तापी जोगी भेद ना लया किंकरी अनूप वाजै जोगी अमतवारो रे रहाओ प्रथमे वसिया सतका खेड़ा तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा दुतिया अर्धो अर्ध समाया एक रया ता एक दिखाया एक है सूत परोए मणिए गाठी पिन पिन पिन पिन तनिए फिरती माला बहविद पाए खिंचा सूत आई थाए चाहो मैं एक है मट है किया तह बिखड़े थान अनक खिड़किया खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया इं किंकरिया नूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहन आई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवां करन करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय ने काम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब

जाके बंधन काटे राए, सोनर बहुर न जोनी पाए। जाके अंतर प्रगट्यो आप, ताको नाही दुख संताप। लाल रतन तिस पाले परया, सगल कुटुंब ओह जन लै तरया। ना किश भरम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा। जत कत देखो आप दयाल, कहो नानक प्रभ मिले रसाल। राम कली महला पंजवा, तांते छुटकी अपनी तारी। प्रभ की आग्या लगी प्यारी, जो किश करे सो मन मेरे मीठा। तां एहो अचरज नैनो डीठा, अब मोहे जानी रे मेरी गई बलाए। बुझ गई तृष्ण निवारी ममता, गुरपुर लियो समझाए रहाओ। कर कृपा राख्यो गुर सरना, गुर पकराए हर के चरना। बीस बसुए जामन ठहराने, गुर पार ब्रह्म एक ही जाने। जो जो कीनो हम तिसके दास, प्रभ मेरे को सगल निवास। ना को दूत नहीं बहराई, गल मिल चाले एक पाई। जा को गुर हर दिए सूखा, ताको बहुर न लागे दुखा। आपे आप सर्व प्रतपाल, नानक रतो रंग गोपाल। राम कली महला पंजवा, मुखते पड़ता टीका सहत। हृदय राम नहीं पूर्ण रहत, उपदेश करे कर लोग दृढ़ावे। अपना कहया अपना कमावे, पंडित वेद विचार पंडित। मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ। आगे राख्यो साल गिराम, मन कीनो दे दिस विश्राम। तिलक चरावे पाई पाए, लोग बिचारा अंद कमाए। खट करमा आर्य आसन तोती, पागठ गृह पड़े नित पोथी। माला फेरे मंगे विभूत, एह बिद कोई न तरयो मीत। सो पंडित गुर शब्द कमाए, त्रैगुण की ओस उत्तरी माए। चतर वेद पूर्ण हरन आए, नानक तिसकी सरनी पाए। राम कली महला पंजवा, कोट बिघन नहीं आवे नेर। अनक माया है ता की चेर, अनक पाप ता के पानी हार। जाको माया पही करतार, जिसे सहाई होए भगवान। अनक जतन ओवा कै सरंजाम रहाओ। करता राखे कीता कौन, कीरी जी तो सगला पवन। बेअंत महिमा ता की केतक बरन, बल बल जाइए ताके चरण। तिन ही किया जप तप ध्यान, अनक प्रकार किया तिन दान। भगत सोई कल मैं परवान, जाको ठाकर दिया मान। साध संग मिल पहे प्रगास, सहज सुख आस निवास। पूरे सतगुर दिया विश्वास, नानक होए दासन दास। राम कली महला पंजवा, दोसना दी जय काहू लोग। जो कमावन सोई भोग, आपन कर्म आपे ही बंद। आवन जावन माया तंद, ऐसी जानी।

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सोरत मत

जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठावर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा। कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनु अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

सदा आनंद न होवी सोग, कबू न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावे हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै ना तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरिय।

कर कृपाल पार ब्रह्म दयाल, मन ते कबो न विसर गोपाल, तेरे दास की हो मातूर, नानक की प्रभ सरदा पूर, राम कली महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ बिन दूजा नाही कोए, तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा, तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ, आगे दरगह पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सह

अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवे अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार। राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवे अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन। भगत भगत संग प्रभु गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। रामकली महला पंजवा महिमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर वखाने रहाओ। संकरा नहीं जाने भेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने मर्म। सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरे आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेख आखी। नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप नानक का प्रभ आपे आप। रामकली महला पंजवा किशु काज न कियो जान सुरत मत नाही किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म किशु ना जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर ना कोई भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस सगला राधा है प्रभ गुणपास। नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। रामकली महला पंजवा राखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल। सगल अराधे जंत मिलिए प्रभ गुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी। कड़कड़ कड़ राता मेरा प्रभ रहाओ। ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे पार सुमत सार।

सगल सियान पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे सही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों वासा मनसा पूर्ण होवै पावै सगल निधान गुर स्यों रहाओ दूजा नहीं जानै कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिलिन माने मान गुर की हर टेक टकाए अवर आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान ता दरगह पावै मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवै सोई पल मान अपना तज मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण ही सुआओ आनंद कर संत हर जप शाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतरै पार देवनहार दा तार अंतना पारावार जा कै कर सर्ब निदान रखन हर निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवा दुलभ देह सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुद होए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सुवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होवै मीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवै आस जम की कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण न जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर किरपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंदन त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करन करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परमगत होए। रामकली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देह तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रवते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहिब सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, करदर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया मान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाम, तुम शरणागत रहो।

झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं कर बार, नानक गुरमुख तत विचार। आराम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावै बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार पव जल पाया। तन तन देख तो गर्भ गया, कनक कम निसों हेत वधाए हे, की नाम विसार आए भरम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया। पुन दान इस ना ना संयम, साध संगत बिन बाज जाया। लालच लागे नाम बिसारियो, आवत जावत जन्म गया। जा जमत आए केस गहे मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया। बिन गुर शब्द ना गद पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेस करे नटुआ, ज्यों मोह पाप मैं गलत गया। एत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देख, सागत मानो अभमान पाया। जिसका हो तान तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया। अंतकाल के साथ ना चल, जो दिस है सब तिस है मया। आद पुरख परंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए कौ रोवै किसै सुनावै, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, साकत जंजाल पराल पया। जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो किश करना सो कर रहया, बख्शन हारै बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हर सोग ते बिरगत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहि समाए लया। आराम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साज दृढ़ाया। सा शब्द रस लीना, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना। अहनिस रह एक लिव लागी, साचे देख पतीना रहाओ। रह गगनपुर दृष्ट समय सुर, अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जिहवा रंग रसीना। मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्व सर्व मैं एका, एह सतगुर देख दिखाई। जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लिखन ना जाई। दीपक ते दीपक प्रगासिया, त्रिपवन ज्योत दिखाई। सच्चै तखत सच महली बैठे, निरपव ताड़ी लाई। मोहे गया बैरागी जोगी, कट कट किंगरी वाई। नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सिखाई। राम कली महला पहला, औहठ हस्त मड़ी कर छाया। तरन गगन कल तारी, गुरमुख केती शब्द उधारी। संतो रहाओ, ममता मार हम मैं सोखै, त्रिपवन जो तुम्हारी। मनसा मार मने मैं राखै, सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत अनाहद वाजै, घट घट जो तुम्हारी। परपंच बेण तही मन राखिया, ब्रह्म अगर पर जारी। पंच तत् मिल अहनिस दीपक, निर्मल ज्योत अपारी। रव सस लौके होतन किंगरी, वाजै शब्द निरारी। शिव नगरी मैं आसन औदू, अलख गम्य पारी। काया नगरी हो मन राजा,
ਪੰਚ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਣ ਕਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹੇ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਪਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਵਰਤੈ ਇਹਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਇਕ ਮੁਰਾਰੀ ਮਨੁਆ ਅਸਤਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦ ਬਾਦ ਨਾ ਪਾਖੰਡ ਔਦੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਔਦੂ ਜਤ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਔਦੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਔਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤਰੈ ਕੁਲਤਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਉਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਔਦੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਔਦੂ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਖਿੰਥਾ ਕਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਬਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੀਨ ਪਵਣ ਜਨ ਲਿਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ ਜਿਤ ਕਿੰਗਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰ ਸਿਉਂ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਖਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਸ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਚੜੈ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੈ ਪਾਈ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਅਵਮਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूजना होवी परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत में लाई। गुरमुख गावे आप गवावे दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिव लाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किश आपे आप वरते नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर करता आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपनिया भगतां नू आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख बिचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पारे उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवा।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरेबो तां सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप आपो पाए अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कह न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बढ़त बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया परविरत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के।

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी गुरु बाजौ तत्तै सार ना जानी। तिही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी, गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत् पाए जिसनो अंदन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वरदाता। जे अग्न में आहार पहुंचावे ओसनो केहो पोहे ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जेही करता खेल रचाया। जात पाणाता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमुल कहै मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटौ रहे लोक मिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौपीऐ विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आपा मुल्क है भागत न के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तंत ना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कह नानक हर रास मेरी मन होवा वनजारा, ए रसना तू अन रस राच रही। तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पीए। हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिसे आए। कह नानक होर अन रस विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तो मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नगरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापै, गुर चरण लागे दिन सुपागे अपना पिर जापै। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रमाण होवा जिन सतगुर सिउ चित लाया। ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम मैं जो धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया। एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया। जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई, कह नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिव दृष्ट होई। ए श्रवणो मेरे हो साचै सुनै नो पठाए, साचै सुनै नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया हो वरसना रस समाणी। सच अलख विडाणी ता की गत कही ना जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनै नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां।

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कहे सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणे इउं कर महल सियापै प्रभ नेड़े हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनों दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योति उजाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एक का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निर्मायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुखोए चित वसै राचे हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुले एक गंड, छे अन देखो जगहंड, धूप छाव जे समकर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यो राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलै तत जै समावा। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा। चोर चोर चख।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहारे जाओ, जो उसारे सो ढांसी तिस बिन अवर न कोए, गुर प्रसादी तिस संभला तां तन दुख न होए, हणा को मेरा

एव छूटै फिर फास ना पाए, बीरा बीरा कर रही बीर पै बैराए। बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए, बाबुल कह कर बेटड़ी बाली बाले ने, जे लोड़ै वर कमनी सतगुर सेवै ते है।

पन पन कड़ी है घड़ घड़ भजै टाहे उसार उसरे टाह सर पर सुख है पी पर पुख है समरथ वे परवाह है भरम भुलाने पे दीवाने विण भागा क्या पाई है गुरमुख ज्ञान डोरी प्रपकड़ी जिन खिंचै तिन जाई है हर गुण गाए सदा रंग राते बहुण न पछोताई है पब्बै पालै गुरमुख बूझै तनिज कर वासा पाई है पब्बै पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरी है गुर प्रसादी आपो चीनै जीवत्या इव मरी है।

क्यों तत्तै अवगतै पावै गुरमुख लगै प्यारो आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहै समाई पूरे गुरते साच कमावै गत मित सबदे पाई आद कहो बिस्माद विचार कथियाले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारी अले कटकट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिखसो खोज लह हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै जी जुगत सच जाणै सोई आप मेट निराल मोहवै अंतर साच जोगी कहियै सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाय लिया एक कहो सच एका जाणै हो मैं दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया जीवत मरै ता सबके सूजै अंतर जाणै सर्वदया नानक ता को मिलै वडाई आप पछाणै सर्व जिया साचो।

कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगा मनहार। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हूं मैं अग्निवारी। मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार। हिवै का कर मंदिर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रवै रह अवाहन। एत उत किस को जान समावै, कवन ध्यान मन मने सुमावै। हां हां मैं विचों खोवै, दूजा मिटै एको होवै। जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाइए खाइए सार। अंतर बाहरे को जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पाणे। सच पैराता गर्भ निवार, एको जाता शब्द विचार। शब्द वसै सच अंतर ही आता।

ना किश बीजे ना उगवै जो बक्से सो खाए। अंबै सेती अंब रलिया बहुड़ ना निकसिया जाए। नानक गुरमुख चलत है वेखो लोका आए। लोक के वेखे बपड़ा जिसनो सोजी ना आए। जिस वेखा ले सो वेखे जिस वसिया मन माहे। महला तीजा मन मुख दुख का खेत है। दुख बीजे दुख खाए दुख विच जमे दुख मरे होमै करत विहाए। आवन जान ना सुजई अंधा अंध कुमाए। जो देवै तिसै ना जानई दित्ते को लपटाए। नानक पूर्व लिखिया कमावना अवरना करना जाए। महला तीजा सतगुर मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का भ्रम कटी है ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जै देखा तैं सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन कौ जाई। सब किश आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजिया नु कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने पूरी बणत बनाई। आपे वेखै सुने आप गुर शब्द ते आई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै ते हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग बारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजिया नो, पापुन गणत गणीनी, जिस बजाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्स मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, एहो तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो सह रत अपने, तिन तन लोभ रत ना होए। पै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, जो बै संतर तात सुध होए। त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए, नानक तेजन सोहने, जो रते हर रंग लाए। महला तीजा, राम कली राम मन वसिया, ता बनिया सिंगार, गुर कै शब्द कमल बिकसिया, ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया, चूका अग्ञान आधार, तिसनो रूपया त्यगला, जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना, सोभावंती नार। मन मुख सिंगार न जाननी, जासन जन्म सभार। बिन हर भगती सिंगार करै, नित जमै होए खुआर। संसार विच सोभ ना पाईनी, अगे जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है, दोह विच है संसार, चंगे मंदे आप लायन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी ना ही जाए, जे बहु तेरा लोची है, बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है, दूजे पाए खुवाए, तन जम्मन मरण न चुकई, होमै विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यों चितलाया, सो खाली कोई ना है, तन जम की तलब ना हो वई, ना होए दुख सहाए। नानक गुरमुखी उबरे, सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी आप अलिप्त सदा रह, होर तंदै सब तावै, आप नहीं चलिया चल है, होर आवै जावै। सदा सदा हर त्याई, गुरमुख सुख पावै, निज कर वासा पाई है, सच सिफत समावै। सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला।

नाम जपे नाम मोवारा दे तिस जन को करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवण दाता नाही किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथो हम जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए भाणै चलन अपणै नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखे खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे। लोक मुहावे चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए। ऐसा हिंदू वेखो कोए।

सूत पाए करे बुरियाई, नाता तोता थाए न पाई। मुसलमान करे वड्याई, विण गुर पीरै को थाए न पाई। राहो दसाए उथे को जाए, करनी बाजाओ पिस न पाए। जोगी कह कर जुगत दसाई, तित कारण कर मुंद्रा पाई। मुंद्रा पाए फिर संसार, जिथे किथे सृजनहार। जेते जीते ते वाटाऊ, चीरी आई टिल ना काऊ। एथे जाने सो जाय सियाने, होर फकड़ हिंदू मुसलमान। सबना का दर लेखा होए, करनी बाजो तरह न कोए। सचो सच वखाने कोए, नानक अगे पुछ ना होए। पौड़ी हर का मंदिर आखिया, काया कोटगढ़। अंदर लाल जवेहरी, गुरमुख हर नाम पढ़। हर का मंदिर शरीर अत सोहना, हर हर नाम दिड़। मन मुखे आप खोआयन, माया मोह नित कड़। सबना साहब एक है, पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, ना सत दुखिया ना सत सुखिया। ना सत पानी जंत फिरै, ना सत मुंड मुंडाई केसी। ना सत पड़िया देश फिरै, ना सत रुखी बिरखी पत्थर। आप तशा वै दुख सहै, ना सत हस्ती बदे संगल। ना सत गाई काओ चरै, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई। जिसनो दे तस्याए मिलै, नानक ताको मिलै वडाई। जिस कट पीतर शब्द रवै, सब कट मेरे हौ सब ना अंदर। जिसै खुवाई तिस कौन कहै, जिसै दिखाला वाटड़ी तिसै भुलावै कौन। जिसै भुलाई पंध सिर, तिसै दिखावै कौन।

अहनस अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे समक

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता, मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुगद है अहंकारे मरना, एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही, कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै, हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है हर भक्ति रापै, सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया, परशुराम रोवे घर आया। अजय सो रोवे भिखिया खाए, ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया, सीता लखमण विछड़ गया। रोवे दसर लंक गवाए, जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवे पांडव पए मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। रोवे जन्मे जा खोए गया, एकी कारण पापी पया। रोवे शेख मसा एक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़। रोवे राजे कन पढ़ाए, कर कर मांगे भिखिया जाए। रोवे किरपन संचय तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेखे लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवरकारा सब बाद नानक मन्या मन्निए बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करते लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावे गुण उच्चरे, गुण माहे समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आपे आप है, आपे दे वडियाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा नानक अंदा होए कै, रतना परखण जाए रतना सार ना जाणई, आवै आप लखाए। महला दूजा रतना केरी गुथली, रतनी खोली आए, वखर तैवन जा रिया दुहा रही समाए। जिन गुण पल्ले नानका, माणक वन जैसे रतना सार न जानई, अंधे वत्तै लोए। पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है, दसवै गुप्त रखी जय। बजरक पाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय। अनहद वाजे धुन वज दे,
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ, ਤਿਤ ਕਟ ਅੰਤਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਲੀਜੈ, ਸਭ ਮੈਂ

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परे प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजीर रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवा मेरे अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रब तो है कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरे मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़िया वर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हौं तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंब नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो भव जल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारे जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै
ਹਾਂ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ।

जन नानक पाया अगम रूप अंत ना काहूं जाए महला पंजवा तन सो वेला कड़ी तन तन मूरत पलसार तन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुरदरसार मन किया इच्छा पूरिया हर पाया अगमा पार हमें टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेवहार उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियां सौपे जिस भंडार फिर पुछना लीतियां जिसनों लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हां जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हम बलिहारी तेनू जे खसम पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एक को मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कन्न समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवा मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध।

व्यापिया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड़ै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए।

माधाना पर्वतकार नेत्र बासर माधाना पर्वतकार नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकालियोन कर आवा गौन चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिनक्योन लहने तर उन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन।

पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भदान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सरतउ न पूजै। मने न की जय रोस, जमे न दी जय दोष, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत्रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िय गुनिय नाम सब सुनिय, अनपौ पाओ न दर्श। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबे ना नासी। कहो रविदास समय सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदया नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहे सो कवो ना सोवे, तीन तलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र लै हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ट करै। चौ मुख दीवा जो द्वार, पलू अंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै। मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

किल बिख दोख गए सब निकर ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावै मुख बोलै नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर मैं एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवै हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जा चौ मैं मूड मुग्ध निस्तरे। किरपा किरपा धार जग जीवन रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जप्यो गुरबचनी हर तारी हर कृपले। रहाओ हर हर अगमया गोचर स्वामी जन जप मिलो सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले। परखोत्तम हर नाम जन गायो सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच तातु हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई जो देखै सस कमले। उनवै कान कान कान हर गरजै मन बिकसै मोर मुरले। हमरै स्वामी लोच हम लाई हम जीवै देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो हम सतगुर चरण पखे। रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो हर दियो नाम मुखे। हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखै के बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी सब तिनके पाप करखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे। रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरणगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत हर को ना उधरियो प्रभ किए पतत पवगे। गुण गावत शिपा दुष्टारियो प्रभ राखी पैज जनगे। जो तुमरे गुण गावै स्वामी हाँ बल बल बल तिनगे। पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह ना सकै हम तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने। रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने। किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सकै हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने। ज्यों जल कुंचर तंदुऐ बंदियो हर चेत्यो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावै जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा मेरे मन कल कीर्त हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने। रहाओ हर तुम वड अगम गोचर स्वामी सब त्यावै हर रुणने। जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने। इहो पर पंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने। ज्यो सलल सलल उठै बो लहरी मिल सलल सलल समणे।
जो प्रभु किया सो तुम ही जाना, हम न जाही हर गहने, हम बारक कौर दिवस धारो, हम करे प्रभु सिमरण। तुम जल निधार मान सरोवर, जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बांच, हर देवो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा पड़ताल, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल, सब दाल दुपाई दुख दाल, हर हो नदर निहाल। रहाओ हर का गृहो रे आप सवार्यो, हर रंग रंग महल बेअंत, लाल लाल हर लाल। हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो, हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल।

जन नानक हर हर मिले भए गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा मन मेर संत संगत सुभवंती सुनया कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हौ कुरबानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब पूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई यान सुनावै हर की हर गाल तिस को हौ बल बल बाल सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो नेह कपट कमावो हर की हर काल। निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल। जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट है दूर। निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम हौ क्या जाना क्या भावै मन प्यास बहुत दर्शावै रहाओ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच जावै कृपा करो जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तू त्यावै। कवन योग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी री जावै। सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै। साई मत साई बुद्ध स्याणप जित निमखना प्रभ बिसरावै। संत संग लगे हो सुख पायो हर गुण सद ही गावै। देखियो अचरज महा मंगल रूप किसी अन नहीं दिष्टावै। कहो नानक मोर्चा गुर लाहे तैं गर्भ जोन कै आवै। नट नारायण

कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख वखाना प्रभयंत्र जामी जान चरण कमल शरण सुख सागर नानक सद कुरबान। नट महला पंजवा हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीना ना दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण तन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल नट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला आपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर पाज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होहे पुनीत नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदियां महला चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मंतन नाम आधारे खिन पल रह न सको बिन सेवा मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर गुर के शब्द सवारे मधसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकर अगम अपारे एक बिनो बेनती करो गुर आगै मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो प्रभ एको पुरख निरारे सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उरतारे हर हर कथा बनियत मीठी ज्यों गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे अत फीके लोभ बेकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अनरस साध बिसारे गुरमत राम नाम तन पाया सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे मेरे ठाकुर के जन प्यारे सास सास सास है जेते मैं गुरमत नाम समारे सास सास जाए ना मैं बिन सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी मोको हरजन मेल प्यारे नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा राम हम पाथर निर्गुणियारे कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पहन शब्द गुर तारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा मैला गर्म लगारे ना मैं सुरत वजी है दय दसो हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिया संको तारे सतगुर मिलिया परम पद पाया हों सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर परमे लोभ पाखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सिर मारे उगवे दिन सियाल जल संभाले बिखमाया के बिस्थारे आई रहन पया सुपनंतर बिख सुपने पी दुख सारे कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़े के खलवारे साग तनार सब पुख पुखाने दर ठंडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी उतरे शब्द विचारे जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर उपाए नक खीनी सब नथ हारे नानक प्रभ खिंचे तिव चलिए ज्यो भावे राम प्यारे। नट महला चौथा राम हर अमृत सर नावारे सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको मिल कर मल पाप उतारे रहाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई पढ़ सुवा गण को धारे परसन परस पय कुबजा।

मानुख कथे कथ लोक सुनावे, जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे, हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत, तब लग किश ना सुमारे। जब कर मंदिर आग लगानी, कड़ कूप कड़े पनिहारे। सागर स्योमन मेल ना करियो, जिन हर हर नाम बिसारे। साकत बचन बिशुआ ज्यों डसी है, तज साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई, लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए, हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग देह सो होवे, क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा, राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यो कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, कर उपर कड निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत अत नीके, मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा भगत मन पावे, जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागे, सब देखे ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवे, सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई, सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवे, विच पाथर कीरे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई, प्रमपूला मिर्ग सिंगारे। बन बन ढूंड ढूंड फिर थाकी, गुरपूरे कर निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे। ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि, अपना कर लुकी जारे। प्रभ को जन अंतर रिद लोचे, प्रभ जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भक्त दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे। अपने आपे आप प्रभ ठाकर, प्रभ आपे सृष्ट सवारे। जन नानके आपे।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामै, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याई हर हर मन जपिया, हर जप माला जिनके मस्तक लिखिया, हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू, हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किलबिख काट, हर हर उर तारियो गुरपुर, मेरा शीस की जय गुरवाट रहाओ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपुर, गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया, शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावे। बहु कंचन दीजे कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लज पानी मटकी माट, काल युग गुरपुरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट। जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरखिया पार। नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम पूले सागता, बिन गुर अंध अंधार, तुर होव ना सो होया को न मेटनहार। अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवत उधार रहाओ। जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप, जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कबलादास, जा कै सिमरन निद निदान, जा कै सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी, हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम रहाओ। बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखै खीर। जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखै बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग, गरड़ मुख नहीं सर्प।

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई। रहाओ मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिया ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ, लून हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई, आ जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरब रहा भरपूर मनुख फिरे से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देह।

मेरे मन गुरमुख नाम हर ध्याए, सदा हर चरनी लाग रहा, एक मन एक है पाए रहाओ। ना मैं जात ना पत है, ना मैं थे हो ना थाओ, शब्द भेद भ्रम कटिया, गुरु नाम दिया समझाए। एहो मन लालच करदा फिरे, लालच लागा जाए, धंधे कूड़ वे आपिया, जंपर चोटा खाए। नानक सब कुछ आपे आप है, दूजा नाही कोए, भगत खजाना बख्सियों गुरमुखा सुखोए। मारू महला तीजा, सच रते से टोल लहो, से वरले संसार, तिन मिलिया मुख उजला, जप नाम मुरार। बाबा साचा साहेब हृदय संभाल, सतगुर अपना पुछ देख, लेहो वखर पाल रहाओ। एक सच्चा सब सेम दी, तुर भाग मिलावा होए, गुरमुख मिले से ना विछड़ै, पावे सच सोए। एक भगती सार न जाननी, मनमुख परम पुलाए, ओना विच आप वरतदा, करना किछू ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई, खले कीचे अरदास, नानक गुरमुख नाम मन वसै, ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा, मारू ते शीतल करे, मनूरो कंचन होए, सो साचा साला ही है, तिस जे वड्यावर ना कोए। मेरे मन आंदन त्याए हर नाओ, सतगुर कै बचन आराध तू, आंदन गुण गाओ रहाओ। गुरमुख एको जानिया, जा सतगुर दे बुझाए, सो सतगुर सालाहीऐ, जिदू एह सोजी पाए। सतगुर छोड़ दूजे लगे, क्या करन अगे जाए, जंपर बदे मारिए, बहुती मिलै सजाए। मेरा प्रभ वे प्रवाहो है, ना तिस्ते ना तमाए, नानक ते सरना।

जप हर हर नाम छिड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिया दुत्तर संसारी सतगुर बोहिथ दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरपौ निरंकार सतनाम जग में सृष्टि उत्तम काम दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो हर सेवक नेड़ न जाई जियो जिस उपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मैं एक निरंजन करता सब कर कर वेखै अपनी चलता जिस हर राखै तिस कौन मारै जिस करता आप छिड़ाई जियो हवन दिन नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छिड़ाई जियो मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डर पै तरत आकाश नखेत्रा सिर ऊपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा एका निरपौ बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूपयो पाया शल बप्रिय कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगर समग्री डरै ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोहै दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बेदारे मेरे ठाकर केते अगंत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरन द्वारे रहाओ बालमीक सुपचारो तरयो बद्धक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराध्यो गदपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नाक्ष नखै बिदारे बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारे मारू महला पंजवा वेतन वेत प्रमयो बहु भांति अनक जतन कर ताए जो जो कर्म किए हो मैं ते पै आ जाए अवर दिन काहू काज न लाए सो दिन मोको दीजै प्रभ जियो जा दिन हर जस गाए रहाओ पुत्र कलत्र गृह देख पसारा इसी मैं उर जाए माया मद चाख पय उदमाते हर हर कबो न गाए एह बिद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ मांगन कौ दान आए त्याग्यो सगला मान महत्ता दास रेण शरण आए कहो नानक।

कवन चहन सुन ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती एक मुद्दत चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा इनमें कवन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हो मैं पाई, जन मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई। बरन चेहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारै तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवा मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरेओ, सहजानंद रखियो गृह भीतर उठ वाहू कौ दौरेओ। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जानेओ, जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथे ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक सवरे हलत पलाता, तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवा खुलिया करम कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई श्रमथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ निवारे निवरे सगल बैराई, सद हजूर हाजर है नाजर कत न पयो दुराई। सुख शीतल सरदासा पूरी होए संत सहाई, पावन पतत किए खिन पीतर मैं मां कथन ना जाई। निरपौ पय सगल पै खोए गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावे ठाकर का रहन दिन सलिवलाई। मारू महला पंजवा जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ कहो क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया तिस्यों जिया रा जार सरे रहाओ। जा कै नाम सुनिया जम छोड़ै ताकी सर ना पाव सरे, काड़ दे स्याल बपरे कहो ताकी ओट टिकाव सरे। जिसका जास सुनत पवतरी है ता स्यो रंग ना लाव।

हराम खोरी पेखत नैन बेदारे ओ रहाओ। असाध रोग उपजो तन पीतर टरत ना काहू टारो। प्रभ विसरत महा दुख पायो एहो नानक तत विचारो। मारू महला पंजवा चरण कमल प्रभ राखे चीत। हर गुण गावे नीता नीत तिसबिन दूजा अवर ना को। वाद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ। जा कै वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार। नानक गयो साचा सोए सुख पाया फिर दुख ना होए। मारू महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसारो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ। हरे नर ऐसी करै अयानथ तज सारंग धर भ्रम तू पूला। मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ करत बिहावथ। फोकट कर्म करै अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ। पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे पुल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखै भोगै तब्त थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप। तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंघना पार ना परना जाए। काम क्रोध लो मोहे ब्यापे नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन ना

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एको ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथे खसम छड़ाए लया विचों गरबे निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जां कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत्ति अपनी कर मानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कब हूं ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर ऊपर तब सोब तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करोदा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहली है जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्याप्या चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाने घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बुझै ओ बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटै नाही जो सिंचै तो पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर टाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करण करीम न जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना सकै साचे सो लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जोत तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल विकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच

साजे गुण प्रगासं जति सति संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेखै कोई न मिटै साचे लिखै। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाल है पार कर जो

गंगा जमुना केल केदारा, कांसी कांती पुरी द्वारा, गंगा सागर बेणी संगम, 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचांकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अभुल ना कबहू भुला, आपे मेहर दया पदाता, ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई, सब सह दाता तिल ना तुमाई, भरपुर धार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमिया पार है, साचे सृजन हार मुरार है। जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिलै मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है, उबे सेवै लख्या पार है। होर केती दर दिसै बिल लांदी, मैं गणत ना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी, होर ना दिसै वेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कह बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुरमत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, घर वार सहज ना जाने शोहर, बिन पर नींद ना पाई है। अंतर अग्न जलै पड़क हारे, मनमुख तके कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे, तस्कर पंच शब्द संघारे, ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै, मनसा मनै समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा, मूर्त सूरत कर आपारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल बिगास हरे सर सुबर, आत्म राम सखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना परथाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सवाया, जिन सिर आत तंद लाया, सच्चे ऊपर अवरना दिसै, साचे कीमत पाई है। ऐथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा तंदूकारे, बाजी खेल गए बाजी गर, जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वड्याई, निरपो मन वस्या लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी, त्रिभवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिलै सुख पावा, साचे साचे तख्त वडाई, हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सह साजी है, क्यों सुख पावै दूवै तीय, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहा मन राता, तिसकी ओट कही सुख पाया, मन तर मैल ना काई है। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी पौ ना प्राती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन पावै, तुझ ही स्यो बने आई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तू सालाही, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला, आज उगादी अपरे अपार है, आद निरंजन खसम हमार है, साचे जो जुगत विचारी, साचे ताड़ी लाई है। केतड़िया जुग तंदूकार है, ताड़ी लाई सृजनहार है, सच नाम सची वड्याई, साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख सरीरा, सत सत वरत गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परख है।

है। गुरमुख जाग रहे दिन राती, साचे की लेवे गुरमत जाती। मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे। शब्द मिले से दरगह पहंदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, जो वाड़ी ओ जाड़ो जाड़ी। ना बिना के साधना लागे, हर बिसरिया दुख पाई है। भोजन साच मिले आगाई, नामरतन साची वड़ियाई। चीना आप पछाणे सोई, ज्योति ज्योत मिलाई है। नामो पुली चोटा खाए, बहुत स्याण भरम न जाए। पच पच मोए अचेत ना चेत, अजगर पार लदाई है। बिन बाद बिरोध कोई नाही, मैं देखा लो ते सालाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यों बढ़त बनाई है। प्रभ की गत मित कोई ना पावे, जे को वड़ा कहाए वड़ाई खावे। साचे साहेब तोटना दाती, सगली तने उपाई है। वड्डी वड्याई वे प्रवाहे, आप उपाए धन समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाई है। एक सोगी एक रोग वे आपे, जोगश करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लिखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हठ कर मरे ना कीमत पाए। गाते अवगत की सार ना जाने, बूझे शब्द कमाई है। एक तीर्थ नावे अन्न ना खावे, एक अग्नि जलावे देख पावे। राम नाम बिन मुक्त ना होई, कित बिद पार लंघाई है। गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मनमुख राम ना जपे अवाई। पच पच बूढ़े कूड़ कमावे, कूड़ काल बहराई है। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सो साज समावे। नानक साच मिले मन भावे, गुरमुख कार कमाई है। मारू महला पहला, आपे करता पुरख विधाता। जिन आपे आपो पाए पछाता, आपे सतगुरे आपे सेवक, आपे सृष्टि उपाई है। आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे। तिनकी संगत ऐन सलाहा, गुरसंगत एह वडाई है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे। उस्तत करह पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रह न सूते दिसै, संगत कुल तारे सच परीसै। काल मालो मैल नाही ते निर्मल, ओए रह भगत लिवलाई है। बूझो हर जन सतगुर बाणी, एहो जोबन सास है देह पुराणी। आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। सागत कूड़ पचे मन हमे, दोह मार्ग पचे पचाई है। छोड़ो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दजै सांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है। छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हम मैं तंद छोड़ो लंपटाई। सतगुर सरण परो ता उबरो, यो तरिय पवजल पाई है। आगे बिमल नदी अगन बिख झेला, तिथे अवरना कोई जियो अकेला। पाड़ पाड़ अगन सागर दे लहरी, पड़दजे मन मुखताई है। गुर पै मुक्त दान दे भाण, जिन पाया सोई बिद जाने। जिन पाया तिन पूछो पाई, सुख सतगुर सेव कमाई है। गुरबिन उर्ज मरे बेकारा, जम सिर मारे करे खुवारा। बांदे मुक्त नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई है। बोलो साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो कर निंदर। बिगर नाही गुरमुख तरतारी, ओं भवजल पार लंघाई है। देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अबनासी। ना जियो मरे ना मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है। ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओह आपे तख्त बह सचियारा। सागत कूड़े बंद पवाई है, मर जन्मै आई जाई है।
गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओए बैसै तखत सो शब्द विचारे, तत लहै अंतरगत जाने सतसंगत साच वडाई है, आप तरै जन पितरा तारे, संगत मुखसो पारो तारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिव लाई है, मारू महला पहला, केते जुग वरते गोबार है, ताड़ी लाई अप्रयापार है, तुंदू कार निरालुम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग शक्ति तिन्नै वरताए, जो तिस्पाणा तवै चलाए, जिसै सरीक न दिसै कोई, आपे अप्रयापारा है, गुप्ते बुझो जुग चतवारे, घट घट वरतै उधर मझारे, जुग जुग एकाएकी वरतै, कोई बुझै गुर विचारा है, बिंद रगत मिल पिंड सरिया, पौन पानी अग्नि मिल जिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द ध्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सचनाम संभाले, अंतर उधर मझारा है, चार पदार्थ लै जग आया, शिव शक्ति कर वासा पाया, एक विसारे ता पिड़हारे, अंदले नाम विसारा है, बालक मरे बालक की लीला, कह कह रोवे बाल रंगीला, जिसका सा सोत नहीं लिया, पूला रोवन हारा है, पर जोबन मर जाहे के की जय, मेरा मेरा कर रोवी जय, माया कारण रोए वे गुचै, त्रिग जीवन संसार आहे, काली हूं फुन तौले आए, विन्ना में गथ गया गवाए, दुर्मत अंदला बिनस बिनासै, मूठे रोए पुकार आहे, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट ना खुले, शब्द मिले निस्तार आहे, बिरद भया तन शीजै देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चलै मोहे कालै, दरगह झूठ खुवारा है, नाम विसार चलै कूड़ियारो, आवत जात पड़ै सिरशारो, साहुर लैकर वास न पाए, पेयड़ै सिर मारा है, खाजै पैजै रली करीजै, बिनया भगती बाद मरीजै, सर अवसर की सार न जाणै, जम मारे क्या चारा है, परविरती नरविरत पछाणै, गुर कै संग शब्द कर जाणै, किसी मंदा आख न चलै, सच खरा सचियारा है, साच बिना दर्श जै ना कोई, साच शब्द पै जै पत होई, आपे बख्श लै तिस पावै, हमै गर्भ निवारा है, गुर कृपा ते हुक्म पछाणै, जुगै जुगंतर की बिद जाणै, नानक नाम जपो तर तारी, सच तारे तारन हारा है, मारू महला पहला, हर सा मीत नाही मैं कोई, जिन तन मन दिया सुरत समोई, सर्व जिया प्रतपाल समाले, सोवंतर दाना बीना है, गुर सरवर हम हंस प्यारे, सागर मैं रतन लाल बहु सारे, मोती माणक हीरा हर जस, गावत मन तन पीना है, हर अगम अगाहो अगाध निराला, हरियंत न पाइय गुर गोपाला, सतगुर मत तारे तार नहारा, मेले रंगलीना है, सतगुर बाजो मुक्त कनेही, ओ आज जुगादी राम स्नेही, दरगह मुक्त करे कर कृपा, बख्शे अवगुण कीना है, सतगुर दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए अमृत रस पाए, जम जा गात नाही कर लाज कर लागे, जिस अग्न बुझी ठर सीना है, काया हंस प्रीत बहुतारी, ओ जोगी पुरख ओ सुंदर नारी, अहनिस भोगै चोज बिनोदी, उठ चलतै मता ना कीना है, सृष्टि उपाय रहे प्रभशा जय, पौन पानी बह संतर गाजै, मनुआ डोलै दूत संगत मिल, सो पाए जोग शकीना है, नाम विसार दोख दुख सही है, हुक्म भया चलना क्यों रही है, नरक कूप मैं गोते खावै, जो जलते बाहर मीना है, चौरासी नरक सख्त भोगाई है, जैसा कीचै तैसो पाई है, सतगुर बाज

जो जन्मे ते सर परमरना किरत पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख शीर्ष नहा है। नीके साचे के वापारी, ससव दल गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल सब सच्चा ओ महा है। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा है। सबको बोलै अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्म

सुन कलाय परंपर धारी आप निरालम अप्रियापारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएंदा पौन पानी सुनने ते साजे सृष्टि उपाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जोत तुम्हारी सुनने कला रहाएंदा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुनने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिस मिलिए परम चुकाएंदा सुनो सप्त सरोवर थापे जिनसा जे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएंदा सुनो चंद सूरज गहनारे तिसकी जोत त्रिपमन सारे सुन्ने अलाख्या पार निरालम सुन्ने ताड़ी लाएंदा सुनो तरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रिपवन साज मेखली माया आपो पाए पाएंदा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करतै बिस्मा सब देखाएंदा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख निज कर पाएंदा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ता की कीमत कह न सकै को त्यों बोले ज्यो बोलाएंदा सुनो सबत पता लियो पाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया अपरंपर सब तेरो किया कमाएंदा रज तम सतकल तेरी छाया जन्म मरण हमें दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएंदा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टि उपाय की आपा सारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएंदा गुरमुख समझे रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगे जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाएंदा पंच तत् सुनो प्रगासा देहा संजोगी कर्मा अभ्यासा बुरा भला दो मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएंदा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर असमत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई पूरे पाग मिलाएंदा इस मन माया कौ नेहो कनेरा कोई बुझो ज्ञानी करो नवेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएंदा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सचे घर बारा नानक निर्मल नाद सब तुहनु सच रामै नाम समाएंदा मारू महला पहला जै देखा तै दीन दयाला आए न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहे निराल मराया जग तिसकी छाया जिस बाप ना माया ना तिस भैन ना भराओ कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती ओ अजरा वरमन पाया तू अकाल पुरख ना ही सरकाला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे करवासा काल बिकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे हर असमाते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया तू अंतर जामी जी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे अमृत नाम कृपा कर दी जय गुर ज्ञान रतन दी पाया पंच तत् मिले हो तन किया आत्म राम पाए सुख थिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना तिस भूख प्यास मन मानिया सर्ब निरंजन कट कट जानिया अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुभाया
अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाति, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल वजाया, बेन रसाल वजावै सोई, जां की तृपवन सो जी होई, नानक बूजो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारै रहै निरारे, आप तरै संगत कुल तारै, तन सफल जन्म जग आया, घर दर मंदिर जाने सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाट दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिखचाखी, अंतर वस्त अनूप निरोलम, गुर मिलिया हर तन पाया, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिलिया हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आदि जुगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवै दिन राती, एहो सच वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तरतारी, हर अंत सिखाई पाया, मारू महला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजै शब्द जगाया, तू एकमका तू एकंकार निराल मराजा, तू आप सवार जन के काजा, अमरिया डोलिया पारिया मोलको, हर अस्तर थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसै परदाना, ऊपर एकंकार निरालम सुन समाद लगाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सिर सिर करने हार साजे, दसवें पुरखा तीत निराला, आपे लख लखाया, पुरख्या लेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना, नानक खोज लहो कर अपना, हरियात्म राम नाम पाया, सर्ब निरंजन पुरख सुजाना, अदल करे गुर ज्ञान समाना, काम क्रोध लै गर्दन मारे, हम मैं लोभ चुकाया, सच्चे थान वसै निरंकारा, या पिछाणे शब्द विचारा, सच्चे महल निवास निरंतर, आवन जान चुकाया, ना मन चलै ना पौन उड़ावै, जोगी शब्द अनाह दवावै, पंच शब्द चुनकार निरालम, प्रभ आपे वाय सुनाया, पौ बैरागा सै समाता, हमै त्यागी अनहद राता, अंजन सार निरंजन जाने, सर्ब निरंजन राया, दुख पै पंजन प्रभ अबनासी, रो कटे काटी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पहु पंजन, गुर मिलिया हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाणे, आपे जाने आप पछाणे, सब तिसका चोज सबाया, आपे सहो आपे वणजारा, आपे परखे परखणहारा, आपे कासव कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, घट घट रवरया बनवारी, पुरख अतीत वसै ने केवल, गुरपुरख पुरख मिलाया, प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मिटा एक दिखाए, आसा माहे निरालम जोनिया, कुल निरंजन गाया, हाँ मैं मेट शब्द सुख होई, आ विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जसो हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया, मारू महला पहला, सच कहो सच्चे कर रहना, जीवत मरो पवजल जग तरना, गुर बोयथ गुर बेड़ी तुलहा, मन हर जा पार लंगाया, हम मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परै परै अपरंपर, जिने आपे आप पाया, गुरमत लेवो हर लिव तरियै, अकल गाय जमते क्या डरियै, जात जात देखो ताता तुम ही, अवरना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जितै लग तरना, अकथ कथै देखै अपरंपर, फुन गर्भ न जो नी जाया,
ਸੱਚ ਬਿਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਵੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਸੱਚ ਬਿਨ ਭਵਜਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤਰਿਆ, ਇਹੋ ਸਮੁੰਦ ਅਥਾਹੋ ਮਹਾ ਬਿਖ ਭਰਿਆ। ਰਹਿਆ ਤੀਤ ਗੁਰਮਤ ਲੇ ਉਪਰ, ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਝੂਠੀ ਜਗ ਹਿਤ ਕੀ ਚਿਤਰਾਈ, ਬਿਲਮ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਵੈ ਜਾਈ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੈ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਿਖ ਪਾਇਆ। ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਬੰਧਨ ਬੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਗਲਫੰਦੇ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਸੋ ਜੰਪੁਰ ਬੰਦ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਧਿਆਈਐ। ਗੁਰਮਤ ਲੇਹੋ ਤਰੋ ਭਵਦ ਉਤਰ, ਮੁਕਤ ਪਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਕਤ ਲੇਹੋ ਪਰਮਪਤ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਲੇਹੋ ਤਰੋ ਸਚ ਤਾਰੀ, ਆਤਮ ਚੀਨੋ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਮਕੇ ਫਾਹੇ ਕੱਟ ਹਰ ਜਪ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਪੰਚ ਸਖੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਅਗਨਿਵਾਰ ਸਮਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ ਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਜੈ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਕੀ ਕੀਜੈ। ਚੀਨੋ ਆਪ ਜਪੋ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਹਰ ਜਗਨਾਥ ਮਨ ਵਹਾਇਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਸੋ ਜਾਣੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੋ। ਘਟ ਘਟ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ, ਰਹਿਆ ਤੀਸ ਸਵਾਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਬੋਲੋ ਹਰ ਜਸ ਸੂਚਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਖੀ ਦੇਖ ਉੱਚਾ। ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਨਾਮ ਸੁਣੈ ਹਰ ਬਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗਾਇਆ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਪਰ ਹਰ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਤਜ ਹੋ ਨਿਚਿੰਦਾ। ਭ੍ਰਮ ਕਾ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਿਸ ਦਾਮਨ ਜਿਉ ਚਮਕ ਚੰਦਾਇਣ ਦੇਖੈ, ਅਹਿਨਸ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇਖੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਦੇਖਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਹੋ ਆਪੇ ਪ੍ਰਵਤਾਰੇ, ਸਸਕਰ ਸੂਰ ਦੀਪਕ ਗੈਣਾਰੇ। ਦੇਖ ਅਦਿਸ਼ਟ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਭ ਤਿਰ ਭਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਉ ਜਾਏ, ਅਨਪਉ ਪਦ ਪਾਵੈ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੋ ਉੱਚਾ, ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ। ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ, ਅਤਰਸ ਮੀਠਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹਰ ਜਸ ਦੀਜੈ, ਹਰ ਜਪੀਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀਰਾ, ਹਰ ਜਪਤੇ ਮਨ ਮੰਤੇ ਧੀਰਾ। ਦੁਕਟ ਘਟ ਪਉ ਪੰਜਨ ਪਾਈਐ, ਬਾਹੜ ਜਨਮ ਨਾ ਜਾਇਆ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਗੁਰਸਬ ਤਰੰਗਾ, ਹਰ ਜਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਾ। ਹਰ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਰ ਤਾਰੇ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ। ਜਿਨ ਜਪ ਜਪਿਓ ਸਤ ਗੁਰ ਮਤ ਵਾਕੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਾਲ ਸੇਵਕ ਭਗਤਾਂ ਕੇ। ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਗਤ ਮਿਤ ਊਤਮ, ਜਗ ਭਉ ਜਲ ਭਾਰ ਤਰਾਇਆ। ਇਹੋ ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਤਰੀਐ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਧਾ ਅੰਤਰ ਜਰੀਐ। ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੈ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ, ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਤਣਖ ਚੜਾਇਆ। ਸਾਖਤ ਨਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਆਈਐ ਜਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਪਰਾ।

नानक हर जस संगत पाई हर सहजे सहज मिलाया अंतर बाहर सो प्रभ जाना रह लिपत चलते करियाना ऊपर आद सर्ब ते हो लोई सच नानक अमृत रस पाया मारू महला पहला कुदरत करने हारिया पारा कीते का नाही क्यों चारा जियो पाए रिजक दे आपे सिर सिर हुक्म चलाया हुक्म चलाए रहा पर पूरे किस नेड़े किस आखां दूरे गुपत प्रगट हर घट घट देखो वरतै ताक सबाया जिसको मेले सुरत समाए गुरसबदी हर नाम ते आए आनंद रूपा नूपा गोचर गुर मिलिया परम जाया मन तन तन ते नाम प्यारा अंत सखाई चलन वारा मोह पसार नहीं संग बेली बिन हर गुर किन सुख पाया जिस को नदर करे गुरपूरा शब्द में लाए गुरमत सूरा नानक गुर के चरण सिरे वो जन भूला मार्ग पाया संत जना हर तन जस प्यारा गुरमत पाया नाम तुम्हारा जाचक सेव करे दर हर कै हर दरगह जस गाया सतगुर मिले ता महल बुलाए साची दरगह गत पत पाए साकत ठौर नाही हर मंदर जन्म मरै दुख पाया सेवो सतगुर समुंद अथाह पावो नाम रतन तन लाहा बिख्या मल जाए अमृत सर नावो गुर सर संतोख पाया सतगुर सेवो संक ना की जय आसा माहे निरास रही जय संसा दुख बिनासन सेवो फिर बाहुड़ रोग ना लाया साचे पावे तिस वडियाए कौन सो दूजा तिस समझाए हर गुर मूर्ते का वरतै नानक हर गुर पाया वाचै पुस्तक वेद पुराना एक बै सुने सुनावे काना अज गर कपट कहो क्यों खुलै बिन सतगुर तत ना पाया करे विभूत लगावे पसमै अंतर क्रोध चंडाल सोहमै पाखंड कीने जोग ना पाई है बिन सतगुर लख ना पाया तीर्थ वर्त नेम करै उदे अन्ना जत सत संयम कथै ज्ञाना राम नाम बिन क्यों सुख पाई है बिन सतगुर परम ना जाया नियवली कर्म पयंगम पाठी रेचक कुंभक पूरक मनहाठी पाखंड धर्म प्रीतनी हर सौ गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया नानक आत्म राम सबाया गुर सतगुर अलख लिखाया मारू सोल हे महला तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद हुक्मी सहजे सरेट्यो पाई कर कर वेखै अपनी वडियाई आपे करे कराए आपे हुक्मे रया समाई हे माया मोह जगत गुबारा गुरमुख बूझे को विचारा आपे नदर करे सो पाए आपे मिल मिलाई हे आपे मिले दे वडियाई गुर प्रसादी कीमत पाई मनमुख बहुत फिरै बिल लांदी दूजे पाए खुवाई हे हउमै माया विचे पाई मनमुख पूले पत गवाई सतगुर होवै सो नाए राचै साचे रया समाई हे गुरते ज्ञान ना वर्तन पाया मनसा मार मनमाए समाया आपे खेल करे सब करता आपे दे बुझाई हे सतगुर सेवे आप गवाए मिल प्रीतम शब्द सुख पाए अंतर प्यार भगती राता सहज मते बने आई हे दुख निवारण गुरते जाता आप मिलिया जग जीवन दाता जिसनो लाए सोई बुझे पौ परम श्री रो जाई है आपे गुरमुखे आपे देवै सच्चा शब्द सतगुर सेवै जरा जम तिस जोहे ना साकै साचे स्यो बने आई है तृष्णा यगन जलै संसारा जल जल खपै बहुत बेकारा मनमुख ठौर ना पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई है सतगुर सेवन सेवट भागी साचे नाम सदा लिव लागी।

मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता गुरसेवा ते शब्द पछाता एको अमर एका पातशाही जुग जुग सरकार बनाई है सो जन निर्मल जिन आप पछाता आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रति गुण गावै दरसा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिलै वडियाई मनमुख निंदक पत गवाई नाम रते परमहंस बैरागी निजकर ताड़ी लाई है शब्द मरै सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवै पाए सुभाई है पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है पढ़ थाके सांत ना आई है एक भस्म लगाए फिर ऐ भेख तारी बिन शब्द हो मैं किन मारी आन दिन जलत रह दिन राती परम भेख परमाई है एक ग्रह कुटाम मैं सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी आन दिन सदा रह रंग राते पै पाए भगत चित लाई है मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ पौके जस कुत्ता जम काल तिस कदे ना छोड़ै अंत गया पछताई है सच्चै शब्द सच्ची पत होई बिन नावै मुक्त ना पावै कोई बिन सतगुर को नाव ना पाए प्रभ ऐसी बणत बनाई है एक सिद्ध साधक बहुत विचारी एक अहनस नाम रते निरंकारी जिसनो आप मिलाए सो बूजै भगत पाए पहु जाई है इस नान दान करे नहीं बूजै एक मनुआ मार मन ऐसो लूजै साचा शब्द रते एक रंगी साचा शब्द मिलाई है आपे सिरजे दे वड़ियाई आपे पाणे दे मिलाई आपे नजर करे मन वसिया मेरा प्रभ इउं फुरमाई है सतगुर सेवै ऐसे जन साचे मनमुख सेवना जान नकाचे आपे करता कर कर वेखै ज्यों भावै त्यों लाई है जुग जुग साचा एको दाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से विछड़ै नाही नदरी सहज मिलाई है हाँ मैं माया मैल कमाया मर मर जमै दूजा पाया बिर सतगुर सेवे मुक्त ना होई मन देखो लिव लाई है जो तिस पावै सोई करसी आपो होवा ना किश होसी नानक नाम मिलै वडियाई दरसा चै पत पाई है मारू महला तीजा जो आया सो सब को जासी दूजै पाए बादा झमफासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साज समाई है आपे करता कर कर वेखै जिसनो नदर करे सोई जन लेखै गुरमुख ज्ञान ते सबके सूजै अज्ञानी अंध कमाई है मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जमै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साज समाई है तंदै तावत मन भया मनूरा फिर होवै कंचन पेटै गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मिलाई है दुरमत झूठी बुरी बुरियार औगणियारी औगणियार कच्ची मत फीका मुख बोलै दुरमत नाम ना पाई है औगणियारी कंत ना पावै मन की झूठी झूठ कमावै पिरका सौ न जाने मूर्ख बिन गुर बूझ ना पाई है दुरमत खोटी खोट कमावै सिंगार करे फिर खसम ना पावै गुणवंती सदा पिर रावै सतगुर मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब वेखै एक ना बख्श लए तुर लेखै आन दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मोह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेले आपे कर वेखै बिन सतगुर बूझ ना पाई है एक शब्द विचार ओ सदा जन जागे एक माया मोहे सोए रहे अपागे
ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਉਰ ਧਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਿਰੈ ਦੇਵਾਨੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੁਖ ਮਾਏ ਸਮਾਨੀ, ਬਹੁਤੇ ਭੇਖ ਕਰੇ ਨੈ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਜਿਤ ਭਾਵੈ ਤਿਤ ਰਾਹੇ ਚਲਾਏ, ਆਪੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ, ਆਪੇ ਸੰਜਮੇ ਆਪੇ ਜੁਗਤਾ, ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਧਸੂਦਨ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਹੈ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜਿੰਨੀ ਏਕੋ ਜਾਤਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਸ ਰਹਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਇਕ ਥੈ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਆਪੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਪਉ ਜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਜਿਓ ਏਕੋ ਜਾਤਾ, ਅੰਤਰਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੱਚ ਸਾ ਲਾਹੀ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕੈ ਚੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੋਗ ਵੈ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪੇ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਆਪੇ ਆਏ ਵਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ, ਟੂਟੀ ਜਮਕੀ ਫਾਸੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਸੇਵੀ ਤੈ ਕਿਸਾ ਲਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਸਭ ਸਲਾਹੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਮਤੀ ਉਤਮ, ਅੰਤਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਕਾਗਦ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਬੂੰਦ ਪਵੈ ਬਿਨਸੈ ਟਹਿਤ ਨਾ ਲਾਗੈ ਬਾਰਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਚੌਕਾ ਸੁਰਤ ਕੀ ਕਾਰਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਆਧਾਰਾ, ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਪਾਵਨ, ਜਿਤ ਘਟ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਸੱਚੈ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅੰਦਰ ਜਾਗੇ, ਸਾਚਾ ਸੂਖ ਸਦਾ ਤਿਨ ਅੰਤਰ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਰਾਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਭ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਜੋਨੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਆ ਪੂਲਾ ਜਾਂ ਖਸਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਜਿਉ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ, ਚੀਨੈ ਸ਼ਬਦ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਿਆ ਮੋਹਲੈ ਬੋਲੈ ਨਾ ਹਮ ਗੁਣ ਨਾ ਸੇਵਾ ਸਾਦੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਪਾਥਰ ਮੇਲ ਲੈ ਹੋ ਤੁਮ, ਆਪੇ ਸਾਚ

आपे बख्श लह सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। एहो तन धरती शब्द बीजया पारा, हर साचे सेती वणज वापारा। सच तन जमया तोट ना आवै, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय, आपे बख्श लह नाम दी जय। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई, गुर प्रसादी बूझै कोई। गुरमुख होवै सो तन पाए, सदी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोहे सो दना काई। मनमुख अंधे किशु ना सूझै, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हौमै माया सूते, अपना करना संभाल।

बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावै डूब मोए बिन नीरा, आवै जावै नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावै मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावै, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे सिओ मन राता है, आपे हीरा रतना आपे हीरा रतना मोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरते संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यों चेतना लागे, दूजे पाए घणा दुखिया गए, मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुणे अवगुण

दुख पाए दा सतगुर सेवै ऐसे वडभागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावै सद ही सच्चे मेल मिलाएं दा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच भरम चुकाए सच सच्चे का आपे दाता जिस देवै सो सच पाए दा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई।

ज्यों तिल कहानी पीड़ाएं दा पूरे भाग गुरसेवा होई नदर करे ता सेवे कोई जम काल तिस नेड़ न आवै महल सच्चा सुख पाएं दा तिन सुख पाया जो तुद पाए पूरे भाग गुरसेवा लाए तेरे हथ है सब वड़ियाई जिस देवै सो पाएं दा अंदर प्रगास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए ज्ञान रतन सदा कर चानन अज्ञान देर गवाएं दा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डूमू अभागे चलदियां घरदार नजर ना आवै जमदर बांधा दुख पाएं दा बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई ज्ञानी त्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिलै वड्याई दर सच्चै सोभा पाएं दा सतगुर नो सेवे तिस्या मिलाए ममता काट सच लिवलाए सदा सच वण जैवा पारी नामो लाहा पाएं दा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम ते आएं दा मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया पाने विच को विरला आया पाणा मन्ने सो सुख पाए पाने विच सुख पाएंदा गुरमुख तेरा पाणा पावै सहजे ही सुख सच समावै

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुझ पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू समय वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बादी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन मैं थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व मैं जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सुप्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंद पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रविया, जन्म मरण की जो न पविया, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथन अंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संगत अंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे करत आई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो करे अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाह अगम अपारा, जिसनों कृपा करे प्रभु अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद रुण चुनकार सहज तुन, साची कार कमाई है। मन पर तीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पे एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन, पिर तने सिंगार रखे संगान, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगे प्रयो बोबे तावे, जो पावे सो आन दिखावे, एक वस्त को पहुँच ना साके, तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिना दो कर जोरे, प्रे परदेश ना जाहो वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरे भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तौ धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत्कार चन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उड़ सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है, आई आ गया पिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊड़ सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, रे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचबुए साकत, निगुरे गल जम फासा है, मन मुख आवै मन मुख जावै, मन मुख फिर चोटा खावै, जितने नरक से मन मुख भोगै, गुरमुख लेपना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावै जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सदगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ ना कत ही जासा है, गुण निधान किश कीम ना पाई, घट घट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख भंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, घट घट पूर्ण सिर सिरै नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सर्ब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच तारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सबके जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सब सह जंत लोवे, टूट ना आवे पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करे भगत हर रंग अपारा, खिन मैं थापो थपनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਭਉ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਆ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰ ਦੂਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਘਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀਜਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਏਂਦਾ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰੇ ਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ

कलयुग में कीर्तन परदाना गुरमुख जपिए लाए त्याना आप तरह सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोवा सब काल है वैसे आप प्रभ किया निचल एक आप अविनाशी सो निचल जो तसै बुझाएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा भेद न जानो मानस देहा ज्यों जल तरंग उठे बो पाती फिर सरलै सल समाएंदा। एक जाचक मंगे दान द्वारे जा प्रभावे ता कृपा धारे देहो दर्श जित मंत्र पतासै हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकुर कितै वस न आवै हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै कीता लोड़न सोई करायन दर फेर न कोई पाएंदा। जिथे औकट आए बंत है प्राणी तिथे हर त्याई है सारिंग पानी जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई तिथे हर आप छड़ाएंदा। वड्डा साहेब अगमा था क्यों मिलिए प्रवे प्रवाह काट सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दो संसार सही है हाँ मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सही समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुभाए अति तो दासी अनकर अंग करै बो पाती जो पिता पूत लाडाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिया जा ले मिलाई गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना सृष्ट उपाय धरी सब तरना जन नानक शरण पया हर द्वार है हर भावे लाज रखाएंदा। मारू सोल हे महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद जो दिसै सो एको तू है बाणी तेरी सरवणी सुनिए दूजी अवर ना जाप सकाई सगल तुम्हारी धारणा। आप चितारे अपना किया आपे आपे आप प्रभ थिया आप उपाय रचियोन पासारा आपे कटकट सारणा। एक उपाय वड़ दरबारी एक उदासी एक करबारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारणा। आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप सारना। सदा सदा सद हो बनहारा ऊंचा अगमा था अपारा ऊने परे परे पर ऊने एह चलत स्वामी के कारणा। मुक्सा लाही सच्चे साहा नैनी पेखा अगमा था करनी सुन सुन मंतन हरिया मेरे साहेब सगले उदाहरणा। कर कर वेखै कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना। संत सभा जै बैसे प्रभ पासे आनंद मंगल हर चलत तमासे गुण गावे अनहद तुन बाणी तै नानक दास चितारना। आवन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखे खेलिया पारा आप यो पायो पावन हारा अपना किया पालना। सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दोए कर जोड़ सिमरव दिन राती मेरे स्वामी अगमे अपारना। तुद बिन दूजे के सालाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझ जन पय निहाला ए पगता की कहलना। गुर उपदेश जपिए मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश तुटे सब बंधन एहो परम हो पर जालना। जय राखे सोई सुख थाना सहजे होए सोई पहलमाना बिन से बैर नाही को बैरी सब एको है पहलना। डर चुके बिन से अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख निरारे
आप छोड़ पै सरनाई जिसका साथ इस कहलना ऐसा को बड़ भागी आया आठ पहर जिन खसम ते आया ते जन कै संग तरै सब कोई सो परवार सदारना ए बख्शीस खसम ते पावा आठ पहर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सही समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूरत देखना पूल गवारा मिथन मुहारा झूठ पसारा जग में कोई रह न पाए निचले एक नारायणा गुरपुरे की पौ सरनाई मोह सोग सब पर मिटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे कौ तरसै बहु देवा सगल भगत जाकी कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई ना सूजै त्रिपमन तावै ता किशु ना बूजै सतगुर साहो भंडार नाम जिस एहो रतन तसै ते पायना जाकी तूर करे पोनीता सुर नर देव ना पावै मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जिस भेड़त पार परायणा पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोख सेवा गुरपुरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरे पंच धातु पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू पारस जा पेटै गुरपुरा ता पारस परस दिखायणा कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाई है हम बल बल गुर दरसायणा गुर की सेवना जाने कोई गुर पार ब्रह्मया गुचर सोई जिसनो लाए लय सो सेवक जिसवट पाग मथायणा गुर की महिमा बेद ना जाने तुषमात सुन सुन बखाने पार ब्रह्म परम्पर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना जा की सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुखो अलाए ता सोबा पाए तिस जमकै पंथ ना पायना संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण तनिया गै तरिया सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायणा निर्गुण कौ संग लिहोर लाए कर कृपा मोह टैले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोए सुख पायना बहुत द्वारे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया सदा सदा संतै संग रखो एहो नाम दान देवायना पय कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहजो सदा आनंदा नारक दा दसायना मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरै धरती अर आकाशा सिमरै चंद सूरज गुणतासा पौन पानी बै संतर सिमरै सिमरै सगलियो पार जना सिमरै खंड दीप सब लोवा सिमलै सिमरै पाताल पुरिया सच सोवा सिमरै खाणी सिमरै बाणी सिमरै सगले हर जना सिमरै ब्रह्मे बिस्न महेसा सिमरै देव ते कोट ते तीसा सिमरै जख दैत सब सिमरै अगंत न जाई जसगना सिमरै पशपंखी सब भूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरै रव रया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरै सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ धना सिमरै नर नारी या शर्मा सिमरै जात जोत सवरना सिमरै गुणी चतर सब बेते सिमरै रैणी अर्दना सिमरै कड़ी मूर्त पल निमखा सिमरै काल अकाल सो सोचा सिमरै सौण शास्त्र संजोगा अलख न लखिया एक खिना
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਕਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਲਾਵਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸੋਜਨਾ। ਜਾਂ ਕੈ ਮਨਮੂਠਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨਾ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਗੁਰ ਕਾ ਜਪ ਜਪਨਾ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਬਹੁ ਨ ਜੋਨੀ ਭਰਮ ਰੋਨਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਮਨ ਜਾਂ ਕੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਤਾ ਕਾ ਭਗੈ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਰਸ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿ ਤੁਨਾ। ਸੋ ਤਨਵੰਤਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ, ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਕੈ ਮਨ ਉਠਾ, ਸੋ ਪੂਰ ਕਰਮਾ ਨਾਸ਼ਨਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੁਆਮੀ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੀਐ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਕਾਟਿਓ ਭ੍ਰਮ ਸਗਲਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੀਸੈ ਏਕ ਬਿਨਾ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਥਾ ਸੁਆਮੀ, ਅਤੁਲ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਆ ਮਿਨਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੀਆ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੀਆ, ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਗਲ ਪਸਾਰਾ ਤੁਮ ਤਨਾ। ਜਮ ਦੂਤ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ, ਜੋ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਸ ਸੁਨਾ। ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਉਤਮ, ਜੋ ਪਾਵੈ ਸੁਆਮੀ ਤੁਮ ਮਨਾ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਨਾ, ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ ਹੋ ਮਿਰਵਾਨਾ।

जन्म जन्म की मैल मिटावो, दीर्घ रोग मिटाय हर औखद, हर निर्मल रापै मंगना। श्रवणी सुनाओ बिमल जा स्वामी, एकायोट तजो बिख कामी, निम निम पाए लगो दास तेरे, कर सुकृत नाही संगना। रसना गुण गावे हर तेरे, मिटाय कमाते अवगुण मेरे, सिमर सिमर स्वामी मन जीवै, पंच दूत तज तंगना। चरण कमल जप बोहित चरिया, संत संग मिल सागर तरिया, अर्चा बंदन हर संत निवासी, बाहुड़ जो न नंगना। दास दासन को कर लिहो गोपाला, कृपा निधान दीन दयाला, सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर, मिल कदे न होवी भंगना। मन तन अर्प धरी हर आगे, जन्म जन्म का सोया जागे, जिसका सा सोई प्रतपालक, हाथ त्यागी हूं मैं हंतना। जल थल पूर्ण अंतर जामी, काटकट रव्या छल स्वामी, परम पीत खोई गुरपूरै, एक रव्या सरबंगना। जत कत पेखाओ प्रभ सुख सागर, हर तोट भंडार नाही रतनागर, अगे अगा किशमित नहीं पाई है, सो बूझै जिस कर पंगना। छाती शीतल मन तन ठंडा, जन्म मरण की मिटवी डंजा, कर गए काढ़ लिए प्रभ अपने, अम्यो तार दृष्टंगना। एको एक रव्या सब ठाई, तिसबिन दूजा कोई नाही, आद मद अंत प्रभ रव्या, तृष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेसर गुर गोबिंद, गुर करता गुर सदबख्शंद, गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना। जो पेखा सो सब के स्वामी, जो सुनना सो प्रभ की बानी, जो कीनो सो तुम्हें करायो, शरण सहाई संत तना। जाचक जाचे तुम्हें अरा दे, पतित पावन पूर्ण प्रभ सा दे, एको दान सर्व सो गुण निद, आन मंगन ने किंचना। काया पात्र प्रभ करने हारा, लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बनी हर बाणी, मन नाम जीठे रंगना। सोले कला संपूर्ण फलिया, अंत कला हुए ठाकर चढ़िया, आनंद विनोद हर नाम सुख नानक, अमृत रस हर पुंचना। मारू सोल हे महला पंजवा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, तू साहिब हां सेव कीता, जियो पिंड सब तेरा दीता, करन करावन सब तू है, तू है नाही किछ साड़ा। तुम्हें पठाए ता जग मैं आए, जो तुद पाणा से कर्म कमाए, तुझ ते बाहर किशु ना होवा, ता पी नाही किश काड़ा। उहां हुक्म तुम्हारा सुनिए, इहां हर जस तेरा पढ़िए, आपे लेखा लेखा आपे, तुम स्यो नाही किश चाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खिलावे त्यों खेलन हारे, उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना, चले नाही को वे पाड़ा। एक बैसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देह दसंतर, एक ही कौ कास एक ही कौ राजा, इन मैं कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति कमन सो नरका, कमन सहसारी कमन सो भगता, कमन सो दाना कमन सो होछा, कमन सो सुरता कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका, हुक्म संसारी हुक्मे भगता, हुक्मे होछा हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा। सागर की ना आत्म पारा, एक खड़े रसा तलकार,

सतनाम तेरा परा पूर्बला। कहो नानक भगत भय सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा। तेरी गतमित तू है जाने, तू आपे कथै तै आप वखाण। नानक दास दासन को करियो, हर पावे दासा राग संगा। मारू महला पंजवा, अल्लै अगम खुदाई बंदे। छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर। एहो दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मुसल्ला। मनसा मारने वारो आसा, देह मसीत मन मौलाना। कलम खुदाई पाक खरा, सरा सरयत ले कमावो। तरीक तर्क खोई टोलावो, मारफत मन मारो अब्दाला। मिलो हकीकत जित फिर ना मरा। कुरान कतेब दिल माए कमाही, दस औरात रखो बदराही। पंच मर्द सिदक ले बांधो, खैर सबूरी कबूल परा। मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा। हूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी, अल्लाह आला हुजरा। सच कमावै सोई काजी, जो दिल सोदै सोई हाजी। सो मुल्ला मलियून निवारै, सो दरवेश जिस अफतरा। सबे वक्त सबे करवेला, खालक याद लै मैं मौला। तस्बी याद करो दस मर्दन, सुनत सील बंधन बरा। दिल में जानो सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला। मीर मलक उमरे फानाया, एक मुकाम खुदाए दरा। अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथै खैरी। पंजवें पंजे इकत मुकाम मैं, ए पंज वक्त तेरे अपर परा। सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हथ कूजा। खुदाए एक बुझ देवो बांगा, बुरगू बरखुरदार खरा। हक हलाल बखोरो खाना, दिल दरियाओ तो मैलाना। पीर पछाण पिस्ती सोई, अजराइल ना दो ठरा। काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना। ना पाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा। मुसलमान

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मैं नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साहि सवारे, सास ग्रास माले करता कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन मैं चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर्ण रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घण कौ रखे ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यों प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसै जनावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलहि कीने, ताकि कीमत कहन ना जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बदै कटे ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंधकूपते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहन ना जाई, अचर जरूब वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक

पौड़ी। पाने हुक्म नाए उन पाने सुख पाया, पाने सतगुर मेले उन पाने सच ते आया। पाने जेवड होर दात नाही, सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया, नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा। जिनको अंदर ज्ञान नहीं, पैकी नाही बिंद, नानक मोया का क्या मारना, जे आप मारे गोविंद। महला तीजा। मन की पत्री वचनी, सुखी हूं सुखसार, सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार। हर साल आहे हर पड़े, गुर कै शब्द विचार, आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार। अगे जात न पुछिए, करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना, बिखिया नाल प्यार। अंदर सुख ना हो वही, मनमुख जन्म खुवार। नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हित अपार। पौड़ी। आपे कर कर वेखदा, आपे सब सच्चा, जो हुक्म न बूझे खसम का, सोई नर कच्चा। जित भावै तित लाएंदा, गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है, गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाही है।